0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, इससे रब्ता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
6: Ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Zabardast hits.
11: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

0: and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: Hit music.
1: Back to back.
2: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
3: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ना कुछ
1: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स होर कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम।
4: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

0: यार, ना फिनिशिंग ना कुछ क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
5: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
6: हजार 97.1 FM।
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

You are listening 97.1 FM.

कोई से तुम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays.
9: Foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Teriye zara. Ye, commercial to sun li.
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055, we'll be grown ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together, it all adds up.
11: So come on, you lot, search Let's Save Water.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
13: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
14: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में, या फिर ऑफिस में?
13: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
14: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
13: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
14: तो फिक्र किस बात की है? पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
15: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
13: Park Foods, जो नाम है मायार का।
16: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: This is a public service announcement.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: We are playing Fizzon 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

जीदुल इस्लाम, वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिम खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम है जी उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैब पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे? ऐप पे जाने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा ना प्ले स्टोर पे या गूगल स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में नहीं बल्कि बेचिया येलो कलर में लिखा फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे और जब उसके बाद आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

तो ये जनाब विशेष टिप्पणी की जो अपनी खुद एतमादी की विशेष टिप्पणी थी मेरे हवाले, मेरे पास जितने भी विचार थे वो मैंने सारे तो नहीं आपके साथ शेयर किए, लेकिन कोशिश की है कि काफ़ी हद तक आपके साथ शेयर किए जा सकें और उस मैंने बिल्कुल शेयर कर दिए। लेकिन कहते हैं ना, क्यों करता है भरोसा गैरों पे, जब चलना ही तुझे पड़ता है अपने पैरों पे।

0: ना कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते या आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगला समझने से कासिर है। अगला सिंपल अगर ये बात कर दे कि यार यहाँ पे लाइफ में ऐसा ही होता है तो फिर आप क्या कर सकेंगे? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ हैं तो फिर उनको किसी से डिस्कस ना करें। कोशिश करें कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके मसाइल का हल निकालें अपने मसाइल को बताए बगैर। ये बहुत बड़ी एक मेराज है इंसानियत की। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो दिस इज़ अ वेल एंड गुड एंड बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। लेकिन इस चीज़ का हमेशा एग्जाम में रखिएगा, इस चीज़ का कोई रिवार्ड नहीं मिलता आपको, इस चीज़ का आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, इस चीज़ का आपको कोई इनाम नहीं मिलता, इस चीज़ का कोई आपको इकराम नहीं मिलता, इसकी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये वो चीज़ें जो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। फिर यहाँ पे ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ता है और ऊपर वाला आपको कहता है कि यार तू अकेला नहीं है, बहुत सारी इस दुनिया में लोग भी तेरे साथ मौजूद हैं। ले जी सामीन, खूबसूरती गपशप हमारे साथ साथ चल रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज का हमारा सब्जेक्ट है। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैब। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।
1: It's commercial time.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
6: रेडियो पल्सर 97.1 FM।
7: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक फॉर 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपकी आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए यू वेलकम उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे ऐप पे जाने के लिए आपको फिर से बताता चलूं कि जनाब जाएंगे गूगल प्ले पे और प्ले स्टोर पे, वहां जाकर आप टाइप करेंगे फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल और एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर का माइक आपके सामने आएगा। डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी समातों की नजर आपको कहते हुए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। और आप जानते हैं गुड वाली मॉर्निंग गुड कैसे होती है, जब आप सुनते हैं 97.1 एफएम को डैप के ऊपर या फिर हमारी ऐप के ऊपर या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग पे सुनते हैं live.radiofaza.co.uk करके, तो फिर होती है मेरी गुड वाली मॉर्निंग मजीद गुड। तो जनाब स्टे ट्यून्ड फजा 97.1 एफएम, लाइव इवेंट्स, डिजाइन, क्रिएटिव इवेंट्स, म्यूजिक कंटेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया और फोटोग्राफी, हर चीज हमारे पास मौजूद रहेगी। हमारे स्टूडियो में एक बैनर है, मैं उसको पढ़ रहा था सिर्फ देख के मेरी पढ़ाई की स्पीड कैसी है और आप लोगों के माइंड सेट मेरी स्पीड के साथ मिल सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इस चीज़ का एहसास मुझे कैसे रहता है, मुझे ऐसे रहता है कि आपके मैसेजेस आते हैं हमारे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पे विच इज 01157101971।

तो ना बात हम खुद एतमादी भी कर रहे थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बात कर रहे थे, और इसी तरह के मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं वो भी मेरे साथ मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो खुद एतमादी पे हों, खुद एतमादी जो टॉपिक ओनली ट्रैक्स तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आपके साथ मौजूद रहती है, एंटरटेनमेंट भी रहती है, और जो खूबसूरत सेगमेंट है इन्फॉर्मेशन का वो भी हमारे साथ रहता है।

0: बिल्कुल ना, बिल्कुल भी आप नहीं भूलना कि कोई आपकी खातिर जी रहा है।
1: तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा।
0: अब छोड़ देना तड़पाना लोगों को, क्या कहते हैं आप लोग। इतनी खूबसूरती वाइब गुड मॉर्निंग नॉटिंग में इस मौसम में हो ना, और ड्राइव करते हुए आप ऐसा प्रोग्राम सुन रहे हो तो डेफिनेटली मजा भी दोपाला हो जाता है और चार पाला, पांच पाला, छह पाला हो जाता है, बल्कि डेफिनेटली कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा दोपाला हो जाता है।

जी, फिर जमाने का गम अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो जाके वापस नहीं आ सका, आहा, ये बड़े गम का लम्हा होता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति आपको एक बार छोड़ दे, यानी दुनिया फानी से कूच कर दें। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, जिनके लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके प्यारे इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, जो अब नहीं रहे। बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप भी ऐसे किन्हीं जगहों पर रहते हैं, या आपके पास पीर के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके बहुत ही प्यारे, बहुत ही चाहने वाले, बहुत ही अजीज़, बहुत ही ख़ास लोग थे, जिस दुनिया में अब नहीं रहे, तो फिर आपसे गुजारिश है कि अपने दिल को संभालिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, आगे चलने का सोचिए, क्योंकि किसी के साथ इस दुनिया से जाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी यादें, उसके गम हमेशा आपके पास रहते हैं।

लेकिन अब जिनके जीवन में जिसने सवेरा लेके आए हैं वो तो जनाब आपके साथ मौजूद है। ये था जनाब आज का खूबसूरत गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। अगर आपको भी ऐसे कुछ पल कुछ लम्हात याद हैं तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 1157100971 पे। इसलिए मैं कहता हूँ स्टे मोटिवेटेड स्टे एनर्जेटिक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM एंड दीजिए राइट नाउ अपने होस्ट को इजाजत। गुड बाय नॉटिंघम।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वेल, ये ट्रैक आजकल मेरी फेवरेट लिस्ट में है शामिल। तो आजकल तो वैसे इतना टाइम नहीं होता कि म्यूज़िक सुनूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जॉब के अलावा भी, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, सो डेली बेसिस पर बहुत सारा असाइनमेंट वर्क, प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारा स्टफ़ होता है, सो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। लेकिन आजकल ये गाना मैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुन रही हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि सिंगर ने इसको बहुत अच्छे से गाया है। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि गाने का जो बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगती है कि जब स्टार्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो कंपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, एंड सडनली गाने में थोड़ा सा रिमिक्स आता है, एंड रिमिक्स के बाद फिर लास्ट में थोड़ा सा कवाली पार्ट है। सो ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर इस साउंड ट्रैक को बना देती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सो मेरे लिसनर्स, अगर आपकी भी ऐसी ही कोई प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन और आप चाहते हैं कि हम आपका पसंदीदा गाना अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, तो उसके लिए सिंपली आप हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आप अपने किसी प्यारे चाहने वाले को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई भी प्यारा सा गाना, उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं। यू नो, ऐसा लगता है कि द कॉन्वर्सेशन इज़ टू साइडेड, क्योंकि बाज़ोकत जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देते तो मुझे नहीं मालूम कि आपका मेरे बारे में, प्रोग्राम के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो जब आप अपना फीडबैक देते हैं तो इट्स मोर लाइक कि द कॉन्वर्सेशन इज़ टू साइडेड, यानी कि दोनों तरफ से बातचीत, गपशप हो रही है। सो वेल लिसनर्स, अभी तक तो आपने नाश्ता कर लिया होगा और आप फ्रेश भी हो चुके होंगे इस ट्रैक को सुन के। सो अब आप बाकायदा तौर पर इस खूबसूरत दिन का आगाज़ कर सकते हैं, और अगर आपने प्लान कर लिया है कि किस तरह से आपने इस दिन को यूटिलाइज़ करना है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। सो जी लिसनर्स, अब से आप बात कर लेते हैं उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने अब अपने दिन का आगाज़ कर लिया है और वो हैं अभी रस्ते में। अच्छा, किस रस्ते की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या फिर बिजनेस के रस्ते में हैं रवा दवा। सो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, खूबसूरत यादों से भरपूर, तो उसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं, यानी हमारा साथ वहां दे सकते हैं। सो दी लिसनर्स, लाजमी हमें ट्यून कीजिए और अपने इस सफ़र को, इस डेस्टिनेशन को खूबसूरत बनाइए सिर्फ खूबसूरत आवाज़ों के साथ, आवाज़ें भी वो जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पर सुनने को मिलेंगी। लेकिन लिसनर्स, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा हमदर्दाना सा मशवरा है आप सभी के लिए कि बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ज़िंदगी कब, कहाँ, किस मोड़ पर ले जाए किसी को नहीं है मालूम। सो हमारी एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात ही हमें बचाती है उन तरह तरह के हादसात से, उन नागहानी सिचुएशन से। सो अगर आप बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी खूबसूरत, स्मूथली चले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, क्योंकि कहीं पर देर से पहुंच जाना इज़ वे बेटर देन कि आप कहीं पर कभी भी ना पहुंच सके। सो बाज़ोकत लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर द स्टंट, जस्ट फॉर द फ्लैक्स, आजकल जैसे कि है हमारी जेंजियाँ वहाँ। सो जेंजी पीपल्स का मोस्टली यही होता है कि जब वो रोड्स पर निकलते हैं तो दे वर लाइक कि चलो आओ रैश ड्राइविंग कर लेते हैं या फिर कार रेसिंग कर लेते हैं, इट्स लाइक अ फन, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपकी हल्की सी भी बेएहतियाती ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसान का मोजे बन सकती है। सो जब भी आप ड्राइव कर रहे हों तो हमेशा ये सोचा करें कि आपकी ज़िंदगी आपकी अकेली खुद की ज़िंदगी नहीं है, आपसे जुड़ी है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी। सो हो सकता है कि आपका कोई भी एक रॉन्ग स्टेप आपके पीछे इतने लोगों की ज़िंदगी को कर दे मुतासर। सो एहतियात किया करें और स्लो स्लो ड्राइव किया करें। और अगर लिसनर्स, अगर आप अभी तक पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस या फिर आपको मिल चुकी है उन तमाम तर हैक्टिक कामों की लिस्ट, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप हमें ट्यून करते चले जाएं और साथ ही साथ अपने काम करते चले जाएं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब भी कभी मेरी ज़िंदगी या फिर डेली रूटीन में मुझे भी कोई हैवी किस्म का टास्क मिलता है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि आई नो कि बिना म्यूज़िक के, बिना ट्यूनिंग के आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, हैक्टिक लगता है।
सो मैं भी यही करती हूँ कि मैं साथ ही साथ कुछ प्ले कर देती हूँ, कोई अच्छा सा ट्रैक, कोई अच्छी सी धुन. इससे ये होता है कि माइंड इंसान का थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और फिर आप स्लोली स्लोली साथ ही साथ अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं. सो अभी प्रीवियसली कुछ दिनों पहले की बात है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और मैं बार बार सोच रही थी कि अच्छा उसको करूँ, बट यू नो इंसान का दिल नहीं करता काम करने का. सो एक दो दिन इसी तरह से सोचते सोचते लग गए, पर तीसरे दिन जाके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई अच्छा सा ट्रैक प्ले करती हूँ और साथ ही साथ अपनी रिसर्च का वर्क स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि मेरा तमाम तर ध्यान इस चीज़ में होगा कि अच्छा कितना अच्छा कितना प्यारा ट्रैक चल रहा है और साथ ही साथ मैं अपना काम भी करती चली जाऊंगी. और कहते हैं ना कि जब आपका मूड रिफ्रेश हो, आपका माइंड रिलैक्स फील कर रहा हो, तो आपको मुश्किल से मुश्किल काम भी मुश्किल नहीं लगता और आप उस काम को बहुत आराम से बहुत आसानी से कर लेते हैं. तो लिसनर्स, आप भी इसी तरह से मेरी इस ट्रिक को यूज करके अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को बहुत इजीली आसानी से कर सकते हैं. सो वेल लिसनर्स, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदी। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग, जहां हम बात करते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की, साथ ही साथ बहुत सारे गर्ली स्टफ की भी। सो दे लिसनर्स, हमारे वो तमाम से लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, सो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। सो किस तरह से बताना है तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, 01157100971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं, सो जल्दी से मैसेज करिए और बताइए। चलो लिस्टनर, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आपकी तमाम तर सॉन्ग रिकमेंडेशंस का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, तो अभी अभी हमें एक बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन मौसूल हुई है, तो क्यों ना हम इस प्यारे से ट्रैक को सुनते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और ट्रैक के उस पार गपशप का सिलसिला जारी करते हैं।

लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये खूबसूरत सा ट्रैक खूबसूरत लगा होगा। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम ना सिर्फ एक कंट्री की बात करेंगे, बल्कि ना ही हम एक कल्चर की बात करेंगे। आज हम एक छोटा सा इमेजिनरी ट्रिप करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट तरह की कंट्रीज़ की, डिफरेंट तरह के कल्चर की। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो दुनिया में हर सोसाइटी के अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं। कुछ ट्रेडिशंस हमें बिल्कुल फैमिलियर लगते हैं, कुछ ब्यूटीफुल होते हैं, और कुछ को देखकर हम जनरली सोचते हैं वेट पीपल एक्चुअली डू दिस। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी दूसरे कल्चर की ट्रेडिशन को अनयूजुअल कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेंज या फिर गलत है। जो चीज़ हमें अनयूजुअल लगती है वो किसी और सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल होती है। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन योर कल्चर एंड हिज और हर कल्चर। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हमारे कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती हैं, लेकिन किसी दूसरे कल्चर में जब आप जाते हैं, आप मूव करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। सो ट्रेडिशंस अक्सर हिस्ट्री, रिलीजियन, ज्योग्राफी, फैमिली वैल्यूज़ और कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। तो आज हम दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में जाएंगे और देखेंगे कि लोग यानी कि सेलिब्रेशंस किस तरह से करते हैं, उनकी वेडिंग्स किस तरह से होती हैं, फेस्टिव्स और एवरीडे लाइफ में कितनी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट्स टेक ओवर फर्स्ट कल्चरल जर्नी। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं जापान की। चलिए सबसे पहले हम जापान की जानिब बढ़ते हैं। सो जापान एक टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन और ब्यूटीफुल कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर माना जाता है। और जापानीज कल्चर में क्लीनिनेस, रिस्पेक्ट, ये वो तरह अनासर हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सो अब मैं आपको बताती हूँ जापान की एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन। सो बेसिकली जापान में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है कि वो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करते हैं। न्यू ईयर के अराउंड फैमिलीज ट्रेडिशनली अपने होम्स को थोरली ग्रीन करती हैं। इस आइडिया को पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पुरानी नेगेटिविटी को, क्लटर को पीछे छोड़कर न्यू ईयर को रिफ्रेश बिगिनिंग देना, साथ ही साथ बहुत सारी नई चीज़ों को वेलकम करना। और मुझे लगता है कि हम सबको इसका एक वर्जन अपने घर में भी करना चाहिए। बस डिफरेंस ये है कि जापान में कल्चरल ट्रेडिशन माना जाता है इसको, और हमारे घर में अम्मी कहती हैं न्यू ईयर बाद में मनाना, पहले अपने घर की सफाई तो कर लो। सो जापान में न्यू ईयर के टाइम स्पेशल फूड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एक और फैसिनेटिंग जापानीज कस्टम है कि हेड्स मोड यानी न्यू ईयर की फर्स्ट विजिट को शेरीन या फिर टेंपल लोग नए साल में ब्लेसिंग्स और गुड फॉर्चून के लिए विजिट करते हैं। और जापान की कल्चर का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि बोइंग सिर्फ ग्रीटिंग नहीं होती, डिफरेंट सिचुएशंस पे रिस्पेक्ट, थैंक्स और अपोलॉजी एक्सप्रेस करने के लिए हर तरह का ट्रेडिशन इस्तेमाल किया जाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज भी कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनासर होता है। अगर आप जापान विजिट करने का चांस आपको कभी ज़िंदगी में मिले, तो आपने सबसे पहले ये एक्सपीरियंस करना है। आप क्या करना चाहोगे? जापानीज फूड, ट्रेडिशनल टेम्पल्स, चेरी ब्लॉसम्स या फिर उनकी फेमस बुलशिट ट्रेन। सो वेल लिसनर्स, ये था जापान का कुछ अनयूजुअल ट्रेडिशन, यानी कि उनके कुछ कल्चरल नॉर्म्स जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं, वो लोग बहुत यूज्ड टू हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, हर आने वाले नए साल में वो अपने घर को प्रॉपरली क्लीन करते हैं, अपने घर की पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं, घर में नई चीज़ों को लेकर आते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से आप एक किस्म से दोबारा से अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। सो इस बीच में वो ये करते हैं कि वो एक फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, जहां वो लोग खूब सारा तैयार होते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं और बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। सो जापान के लिए ये ट्रेडिशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो लोग करते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट कंट्री के हिसाब से देखें, जैसे कि हम यूके के हिसाब से देखें, इंडिया के हिसाब से देखें या फिर बांग्लादेश के हिसाब से, सो हम लोग ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते। सो हम सब के लिए ये एक अनयूजुअल ट्रेडिशन समझा जाता है या फिर माना जाता है। सो वेल लिस्ट,
सिस्टर्स, अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री की जानिब, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो हम कोशिश भरपूर करेंगे कि हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कवर करें और आपसे शेयर करें डिफरेंट और मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके नॉर्म्स और उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स।

सो वेल लिसनर्स, इस लिस्ट में हम अपनी अगली कंट्री की जाने पढ़ रहे हैं. सो हमारी नेक्स्ट कंट्री है एनी किसेस, कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. सो स्पेन. अब हम बात करते हैं स्पेन की. सो स्पेन में फेस्टिवल्स और पब्लिक सेलिब्रेशंस का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्पेन की एक फेमस ट्रेडिशन है लेस फेलिस, जो वेल्सिनिया में सेलिब्रेट होती है. अच्छा, इस फेस्टिवल में ह्यूज आर्टिस्टिक फिगर्स और बहुत सारे लोग आते हैं. ये फिगर्स कभी फनी, कभी पॉलिटिकल और कभी सोशल थीम्स रिप्रेजेंट करती हैं. अच्छा, फेस्टिवल के एंड पर इनमें से कोई लार्ज फिगर्स को सेरेमोनियल बर्न किया जाता है. अब सोचिए, आप मंथ्स लगाकर एक मैसिव आर्टवर्क बनाएं, लोग उसे देखें, पिक्चर्स लें और फिर फेस्टिवल के एंड पर वो बर्न हो जाए. लेकिन इस ट्रेडिशन के पीछे आइडिया रिन्यूअल और लेटिंग को से कनेक्टेड किया जाता है. और स्पेन में एक और बहुत फेमस ट्रेडिशन है ला टमाटिनो. इस इवेंट में पार्टिसिपेंट टमाटोज को एक दूसरे पर थ्रो करते हैं. जी हाँ, टमाटो फाइट. अब ऑनेस्टली, अगर किसी ने मुझे बचपन में कहा होता कि दुनिया में एक फेस्टिवल है जहाँ लोग ऑफिशियली टमाटो से फाइट करते हैं, तो मैं शायद बिलीव ना करती. लेकिन ये इवेंट दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है और ये हमें एक इंटरेस्टिंग लेसन भी देता है. सो बेसिकली लेसन ये देता है कि हर कल्चर में सेलिब्रेशन का स्टाइल ज़रा डिफरेंट, ज़रा हटके, ज़रा मुनफरिद होता है. कहीं तो फायरवर्क्स होते हैं, तो कहीं म्यूज़िक, कहीं फूड, तो कहीं टमाटोज. सो ये थे कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ अनयूजुअल ट्रेडिशनल्स या फिर ट्रेडिशन नॉर्म्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेन. सो मैंने आपसे शेयर किया, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. वेल लिसनर्स, अगर आप कभी स्पेन जाएं तो इन दोनों ट्रेडिशन में से आप कौन सा ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना चाहेंगे? वेल आई थिंक सो कि जो ट्रेडिशन वन है, हमारे आर्टिस्टिक लोग में भी हो सकता है, उसे ना सेलिब्रेट करें. क्योंकि आई नो कि एक आर्टिस्ट के लिए अपने आर्ट को बर्न करना इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट बिल्कुल उसके बच्चे के जैसा होता है. और मैंने अक्सर औकात यही सुना है कि अगर समटाइम्स जब आर्टिस्ट कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी नया बना रहे होते हैं और समहाउ वो अच्छा नहीं बनता, लेकिन आर्टिस्ट कभी भी अपने आर्ट को ज़ाया नहीं करते. सो उनके लिए यह टास्क थोड़ा सा मुश्किल होगा या फिर इस ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना. अब देखें, यह ट्रेडिशन हमें सुनने में कितना अजीब लग रहा है और हम सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है. लेकिन अगर अब हम यही क्वेश्चन स्पेन के लोगों से करें तो उनके लिए ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत नेचुरल है. इसलिए कहते हैं कि हर ट्रेडिशन जो हमें अनयूजुअल लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो बाकियों के लिए भी अनयूजुअल हो या दूसरे लोग उसे उस तरह से देखते हों. हो सकता है वो उनके लिए टोटली नॉर्मल हो. सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक. सो आप बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रैक सुनना है. फिलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं और हम कोई इंग्लिश ट्रैक सुन लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उर्दू हिंदी गाने सुने हैं. सो सुनते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग. आई थिंक सो कि मैं 100 ऑफ टाइम्स इस गाने को सुन चुकी हूँ इन 2026. तो एक बार फिर से सुनते हैं और ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात. एंड देन गपशप का सिलसिला तो साथ ही साथ चलता रहेगा.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Bigger and better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

वेलकम बैक वन सेकेंड, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदीद। रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM और डैब पे। सीधो लिसनर्स, मुझे और आपको साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा मुकम्मल। कैन यू बिलीव इट के हमें साथ पे गुफ्तगू करते हुए यानी गपशप करते करते तकरीबन एक घंटा मुकम्मल हो चुका है। और वापस अपने टॉपिक की जानब बढ़ते हैं, उसको अगेन कंटिन्यू करते हैं, और ऐसा तभी होता है जब आप की गुफ्तगू बहुत बासर हो या फिर कम्युनिकेशन दोनों जानब से हो रही हो। क्योंकि जब कम्युनिकेशन हमेशा वन साइडेड होती है तो आप एक अकेला इंसान आखिर कितना को बोल सकता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन टू साइडेड होती है तो आप बातें करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं, और ठीक इसी तरह से आपको वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और वक्त तेज़ी से बदल जाता है। और फिर कुछ इसी तरह से होता है कि घंटों मिनट्स में और मिनट्स सेकेंड्स में तब्दील हो जाते हैं। सो दी लिसनर्स, वापस से कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि है अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो इस जर्नी में अब हम अपनी तीसरी कंट्री की जानी बढ़ते हैं, जो कि है जर्मनी। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करूंगी जर्मनी के कुछ ट्रेडिशंस। सो जर्मनी में सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जो वेडिंग सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। अब इसे कहते हैं पोल्टरबैंड। इस ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन में गेस्ट पोट्री या फिर सिरेमिक ऑब्जेक्ट्स प्ले करते हैं। द आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग गुड लक टू द कपल। और इमेजिन करिए ब्राइड और ग्रूम के घर के बाहर डिशेस टूट रही हो, एंड साथ ही साथ इंस्टेड ऑफ सेइंग के हु ब्रोक दैट, एवरीवन इज बेसिकली सेइंग गुड लक। जर्मनी में वेडिंग्स के अराउंड दूसरी फन कस्टम्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लेसेस पर न्यूली वेड्स को सिंबॉलिक टास्क कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह की ट्रेडिशंस का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि होता है कम्युनिटी और फैमिली को सेलिब्रेशन का पार्ट बनाना, और यही चीज़ ट्रेडिशंस को इंटरेस्टिंग बनाती है। ट्रेडिशन तब और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं जब हम उसमें फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। सो दी लिसनर्स, ये तो था जर्मनी का कुछ अनयूजुअल, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद सा ट्रेडिशन। आई नो आपको सुन के बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा कि भला ये कैसा ट्रेडिशन है कि जहाँ एक न्यू ईयर या फिर एक न्यू जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है वहाँ आप बर्तन तोड़ें। थोड़ा सा स्टूपिड लगता है, आई नो आप सोचेंगे, जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये ट्रेडिशन जर्मनी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो लोग इससे इस कदर यूज टू हैं कि अगर आप उनके सामने जाएंगे या फिर आप उनको देखेंगे ये करते हुए तो आप काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस रिएक्शन देंगे, लेकिन वो लोग कहेंगे कि इट्स रियली नॉर्मल, और इंस्टेंट ऑफ सेइंग के अच्छा हम बटन तोड़ रहे हैं, वो समझेंगे कि ये उनकी ज़िंदगी में गुड लक को और गुड अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है। सो दी लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंट्री की जानिब, क्योंकि कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को आप सभी के लिए कवर कर सकें और आपके साथ शेयर कर सकें उनके अनयूजुअल ट्रेडिशंस। सो जर्मनी के बाद अब नंबर आता है मैक्सिको का। सो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मैक्सिको, और यहाँ के कल्चर, कलर्स, म्यूज़िक, फूड और फैमिली ट्रेडिशंस बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड है। अच्छा, मैक्सिको यानी डे आफ्टर डेथ दुनिया का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कल्चरल ट्रेडिशन में से एक है। अच्छा, इस ओकेजन में फैमिलीज डिसीज्ड लव्ड वंस को रिमेम्बर करती है, ब्राइट कलर्स, फ्लावर्स, फोटोग्राफ्स, कैंडल्स, साथ ही साथ स्पेशल ऑफरिंग्स के थ्रू अपने लव्ड वंस की मेमोरीज को ऑनर दी जाती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है कि इस ट्रेडिशन को सिर्फ डेथ फेस्टिवल समझना बहुत सिंपलिस्टिक होगा। इसमें रिमेम्बरेंस, फैमिली कनेक्शंस और मेमोरीज का भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। सो फैमिलीज अपने लव्ड वंस की फेवरेट फूड्स को, पर्सनल बिलोंगिंग्स को और डिस्प्लेज का पार्ट बनाती हैं, यानी कि ब्राइट ऑरेंज फ्लावर्स भी इम्पोर्टेंट सिम्बोलिक रोल अदा करते हैं इस सब में। और मुझे पर्सनली इस ट्रेडिशन का एक कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल लगा है, वो ये है कि पीपल हु लव मे नो लॉन्गर बी फिजिकली विद अस, बट देयर मेमोरीज रिमेन पार्ट ऑफ अवर स्टोरीज।
अच्छा, हर कल्चर ग्रेव और रिमेम्बरेंस को अपने यूनिक वे में एक्सप्रेस करता है। कहीं दुआ होती है तो कहीं साइलेंस, और कहीं इस तरह से फेस्टिवल। और मेक्सिको में रिमेम्बरेंस को कलर और फैमिली गैदरिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। आई नो, अब आपको सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक इन यूके, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, सो ये एक कॉमन सी बात है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डेथ को एक शोक के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि जब भी किसी की डेथ होती है या किसी की डेथ सेरेमनी होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं, हम काला रंग पहनते हैं, हम उसकी फैमिली से ताज़ियत करते हैं और हम उसे बिल्कुल इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बुरा सानहा पेश आया हो। लेकिन यहाँ ये जो मेक्सिको का ट्रेडिशन है या फिर हम कह लें कल्चरल बायस, आई थिंक सो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यूनिक लगेगा। अब इसके यूनिक बात ये है कि मेक्सिको में जब भी किसी की डेथ होती है या फिर कोई भी डेथ सेरेमनी होती है तो वो लोग इसको कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से आप कोई फैमिली गेट टुगेदर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ। सो वो लोग ब्राइट कलर्स पहनते हैं, फुल इन्जॉय करते हैं, फुल सेरेमनी करते हैं। सो आई थिंक सो कि ये उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा, कॉमन सा, अनयूजुअल ट्रेंड है तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल ट्रेडिशन है। फिर वही बात आ जाती है कि हर कल्चर के, हर सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। सो इसीलिए आज मैंने सोचा कि हम अपने प्रोग्राम का टॉपिक भी यही रखें कि अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इससे ना सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा होगा बल्कि हमें ये भी मालूम होगा कि दुनिया भर में लोग कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको अप्लाई कर रहे हैं, बट हम उनको उस तरह से नहीं देखते। सो दिल इस तरह प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का। सो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर है, उन्होंने हमें ये गाना रिकमेंड किया है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने लिसनर्स को निराश नहीं करते, तो अभी हम सुनते हैं उनका फेवरेट साउंड ट्रैक। ओवर ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात। ओवर, ट्रस्ट मी, अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मौजूद जो कि मुझे करनी है आपसे शेयर। सो आपने कहीं भी नहीं जाना, जल्दी से ये प्यारा सा ट्रैक सुन, ट्रैक के उस पार करते हैं दोबारा से कंटिन्यू।

चलो लिसनर्स, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो इसमें हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के मुतालिक बात की। सबसे पहले हमने जापान की बात की, जापान के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद मैक्सिको। अब इसी लिस्ट में हम शामिल करने जा रहे हैं एक और कंट्री को, और आपसे मैं शेयर करती हूँ कि ऐसे कौन से ट्रेडिशंस हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं जो वहाँ तो बहुत ही कॉमन हैं, लेकिन अगर आप में या हम में से कोई भी उसे देखेगा तो हमें वो थोड़े से यूनिक लगेंगे या फिर कह लो काइंड ऑफ डिफरेंट लगेंगे। सो इंडिया इट्सेल्फ इज़ इनक्रेडिबली डाइवर्स। डिफरेंट रीजन्स, रिलीजियंस और कम्युनिटीज़ की अपनी ट्रेडिशंस हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है होली। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन ट्रेडिशन में, तो सबसे पहले हमारा जो मोस्ट फेमस ट्रेडिशन है जो कि आप सभी को भी मालूम होगा थ्रू मूवीज़, थ्रू इंडियन सीरीज, इज़ होली। होली में पीपल कलर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल का बैकग्राउंड सिर्फ कलर्स तक लिमिटेड नहीं है। होली इज़ कनेक्टेड विद थीम्स ऑफ स्प्रिंग, रिन्यूअल एंड द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर ईवल। सो एक इंटरेस्टिंग सोशल एस्पेक्ट भी है। फेस्टिवल का टाइम सोशल बैरियर्स टेम्परेली बिकम लेस इम्पोर्टेंट और लोग कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते चले जाते हैं। सो बेसिकली होली एक इस तरह का इवेंट है जो कि महज एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें आप डिफरेंट तरह के कलर्स उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं या फिर गिरा रहे हैं। सो बेसिकली होली का मतलब है कि आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, स्प्रिंग आने वाला है। सो स्प्रिंग की खुशी में काइंड ऑफ इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ऑनेस्टली बात करते हैं, अगर कभी आप अपने नॉर्मल घर में रह रहे हो और अचानक से आकर कोई आपको रंग लगा कर चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? आई नो आपको ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा और काइंड ऑफ अनहाइजीनिक लगेगा, लेकिन अब ये ट्रेडिशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, कॉमन है, प्लस उनके लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फेस्टिवल हो। जोक्स अपार्ट, डिफरेंट कल्चर्स को समझने का बेस्ट वे यही होता है कि हम उनके ट्रेडिशंस के बैकग्राउंड को समझें। सिर्फ ट्रेडिशन को देखना इनफ नहीं है, व्हाई डू दे डू इट, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। सो ये था इंडिया का कुछ अनयूजुअल ट्रेडिशन, कुछ ऐसा ट्रेडिशन जो कि उनके लिए तो है बहुत कॉमन, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सभी के लिए है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, और हो सकता है कि हम इसे अपनी अमली ज़िंदगी में नॉर्मली ना करना चाहते हों। सो अब अगली कंट्री की जाने बढ़ते हैं जो कि है साउथ कोरिया। अच्छा, साउथ कोरिया के बहुत सारे फैंस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के ड्रामास एंड के पॉप आइडल्स। सो आप में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं के पॉप आइडल को, या फिर आपको पसंद है के ड्रामास? सो 01157100971 इस नंबर के थ्रू आकर मुझे बताइए, क्योंकि अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मुझे कोरियन ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ द के पॉप ड्रामास, उनकी बेस्ट बात ये होती है कि उनके जो मेन लीड्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, यानी कि थोड़े से फिक्शनल तो होते हैं ड्रामास, लेकिन दिखाया ये जाता है कि कपल की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आई मीन टू से, अगर आप एक इंग्लिश ड्रामा देखते हैं या फिर आप एक अमेरिकन ड्रामा देखते हैं एंड देन आप देखते हैं एक ये ड्रामा, तो आई फील लाइक के यू डेफिनेटली नो द डिफरेंस। अच्छा, अब अमेरिकन ड्रामास में ये होता है कि आपको वो लव, वो केमिस्ट्री नहीं देखने को मिलती, क्योंकि सब चीज़ें बहुत फास्टली और बहुत ही स्पीडली हो रही होती हैं। बट के ड्रामास की बेस्ट बात ये होती है कि ड्रामा बहुत स्लो चलता है, स्लोली स्लोली केमिस्ट्री डेवलप होती है, साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, फ्रेश कपल्स देखने को मिलते हैं और द वे दे ट्रीट टू ईच अदर। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ है के ड्रामास की फ़ैन। अच्छा, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा फेवरेट के ड्रामा कौन सा है। सो मैंने बहुत सारे के ड्रामास देखे हैं, लेकिन जो पहला ड्रामा जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे के ड्रामास देखने चाहिए, वो था द हायर्स। अच्छा, ये ड्रामा मैंने देखा था व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, तो ये बहुत पुराना ड्रामा है, आप भी सर्च कर सकते हैं। ये ड्रामा आपको ईजीली नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स के अलावा आपको
वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पर देखते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि वहाँ आपको डबिंग में मिल जाए, तो आप इसे इजीली इंग्लिश में करके देख सकते हैं, वरना दूसरी तरह से ये अपनी ओरिजिनल साउंड ट्रैक में ही मिलेगा। अच्छा, जितने भी करेक्टर्स थे द हायर्स में, वो लोग तो अब बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं इन साउथ कोरिया। सो अगर आप इमेजिन करें कि आप उन तमाम करेक्टर्स को लेकर दोबारा से कोई सीरियल बनाएं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, आप बात करते हैं जहां हम बात कर रहे हैं के ड्रामास की, तो वही के ड्रामास के अलावा भी, ज़रूरी नहीं है कि के ड्रामास में आपको सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज मिलती हैं, आपको एक्शन फिक्शन भी मिलता है। सो मैंने एक सीरीज़ देखी थी, ऑल ऑफ अस आर डेड। सो ऑल ऑफ अस आर डेड एक की सीरीज थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फिक्शनल थी, उसमें बहुत ही डेंजरस सीन थे, काफ़ी सिनेमैटिक थी, तो हर तरह के ड्रामास आपको मिल जाते हैं। सो लिसनर्स, हम बात तो ये कर रहे थे कि मैं आपसे शेयर करने लगी थी साउथ कोरिया के कुछ अनयूजुअल ट्रेडिशंस, लेकिन फिर बातों में से बातें निकलती चली गई और हम जा पहुँचे के ड्रामास पर। सो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, के पॉप आइडल्स की बात कर रहे हैं, वहीं क्यों ना उनका कोई प्यारा सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो एक प्यारा सा के पॉप ट्रैक मैं आप सबके लिए प्ले कर देती हूँ। वेल, अगर के पॉप आइडल्स की बात की जाए, तो बहुत सारे के पॉप बैंड्स इस वक्त साउथ कोरिया में मौजूद हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट BTS है, ब्लैक पिंक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंड्स हैं, लेकिन मैंने उनको कभी भी नहीं सुना, इतना टाइम ही नहीं होता। मैं मोस्टली BTS के गाने सुनती हूँ, तो इसीलिए एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए प्ले कर देती हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं ट्रैक, और ट्रैक के उस पार हम कंटिन्यू करते हैं साउथ कोरिया को, यानी कि उनके अनयूजुअल ट्रेडिशंस को।

इसलिए तो लिसनर्स हमारे जितने भी के पॉप आइडल फैंस लिसनर्स हैं उन्हें तो ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा. सो द सॉन्ग नेम इज डायनामाइट. और अब हम जरा बात कर लेते हैं अनयूजुअल ट्रेडिशंस की. सो बेसिकली साउथ कोरिया में फैमिली ट्रेडिशंस और रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है. अच्छा, ट्रेडिशनल कोरियन कल्चर में एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना एक बहुत अच्छा एलिमेंट समझा जाता है. अब फैमिलीज क्या करती हैं, हर न्यू ईयर पर गैदरिंग्स करती हैं जहाँ ट्रेडिशनल फूड्स इंजॉय किया जाता है. यंगर फैमिली मेम्बर एल्डर को रिस्पेक्ट शो करती हैं. ट्रेडिशनल क्लॉथिंग ओकेजन्स, ये तमाम तर चीज़ें इसका हिस्सा बनती हैं. और एक फैसिनेटिंग थिंग जो कोरियन एज ट्रेडिशंस और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है. सो बेसिकली कोरियन कल्चर में एज और सोशल हायरार्की हिस्टोरिकली कम्युनिकेशन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती रहती है. आज मॉडर्न कोरिया में सिस्टम और प्रैक्टिसेस चेंज हो चुकी हैं, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स अब भी कल्चरल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये हमें रिमाइंड करवाता है कि कल्चर सिर्फ क्लॉथ्स और फूड्स का नाम नहीं है. कल्चर इज ऑल्सो अबाउट हाउ वी टॉक टू पीपल, हाउ वी ट्रीट दैम एंड हाउ वी ट्रीट एल्डर्स एंड हाउ फैमिलीज स्टे कनेक्टेड. सो बेसिकली ये थे कुछ कोरिया के, साउथ कोरिया के अनयूजुअल ट्रेडिशंस. सो बेसिकली इनका अनयूजुअल ट्रेडिशन ये है कि ये लोग एल्डर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. फॉर लाइक कि ये लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि सम हाउ इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, सो रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी भी वो चेंज नहीं करते. सो विच इज़ रियली वियर्ड फॉर मी एंड ऑफकोर्स आप सभी के लिए भी होगा. बट साउथ कोरिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कॉमन है, नॉर्मल है. सो वेल लिसनर्स, ये तो थे कुछ अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आई होप आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे. वेल मैंने पूरी कोशिश तो यही की कि हम कोशिश करके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कवर करें, बट समहाउ अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ बाकी हैं. सो द लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक अदद पार्ट टू बनाया जाए तो डू लेट मी नो. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम एक और दिन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें. सो फिलहाल के लिए आज के इस टॉपिक से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो ज़रा मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो बेसिकली हमें जो चीज़ें सीखने को मिली हैं वो ये है कि जापान से क्लीनिनेस और रिस्पेक्ट, स्पेन से सेलिब्रेशन और कम्युनिटी स्पिरिट, जर्मनी से वेडिंग कस्टम्स और मैक्सिको से रिमेम्बरेंस. अच्छा, अब जरा बात करें इंडिया की, तो इंडिया से कलरफुल कल्चरल सेलिब्रेशन, तो कोरिया से फैमिली वैल्यूज़, ये वो तमाम तरह चीज़ें हैं जो कि आज हमने सीखी हैं. सो आई होप आपको आज का ये सेगमेंट, ये टॉपिक अच्छा

वेलकम बैक टू अवर कुकिंग ब्यूटीफुल सेगमेंट द स्पाइस किचन, जहां हम बनाते हैं हर दिन कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद। सो हमेशा की तरह आज भी मैं दीवा डायलॉग में हमारी सभी लवली डिवास के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सो ये रेसिपी है चिकन रेसिपी, लेकिन ये दिखने में जितनी ही ज़्यादा फैंसी लगती है बट बनाने में है उतनी ही ज़्यादा आसान। सो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, डिलीशियस है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह की रेसिपीज़ को घर में नहीं ट्राई करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये रेसिपीज़ थोड़ी सी मुश्किल होंगी और हम ठीक तरीके से बना नहीं सकेंगे। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी इन तमाम तरह समस्याओं को दूर कर दूँ और आपसे शेयर करूँ ये चटपट सी रेसिपी। सो आज की हमारी रेसिपी है चीज़ी स्टफ्ड चिकन। सो इसमें जूसी चिकन ब्रेस्ट के अंदर हम बहुत सारी क्रीमी चीज़ फिल करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होगी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होगी। अच्छा, चलिए जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि नाम सुनते ही अभी से ही मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाकर खा लें। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अगर कोई काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो कर दीजिए उसे स्किप, अपनी नोटबुक, कॉपी या फिर डायरी रेडी कर लीजिए। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। सो क्रीमी चीज़ी चिकन स्टफ बनाने के लिए आपको जो जो भी इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं उनकी लिस्ट कुछ यूं है। सो चिकन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 लार्ज बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1.5 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1.5 टीस्पून ड्राइड ओरिगैनो, 1.5 टीस्पून लेमन जूस एंड 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। सो ये वो तमाम अज़ा हैं जो चिकन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब फिलिंग के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो फिलिंग के लिए 1.5 कप क्रीम चीज़, 1.5 कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड स्पिनच, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन अनियंस एंड 1.5 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और लास्टली अ लिटिल सॉल्ट एंड अ लिटिल ब्लैक पेपर पाउडर। सो ये तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स हम फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे जो कि इस रेसिपी को मज़ीद डिलीशियस और टेम्पटिंग बनाएगा। अब कुकिंग के लिए हमें चाहिए 1 to 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एंड 1 टेबलस्पून बटर। सो डियर लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी इस रेसिपी में हैं दरकार और मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। सो अगर आपने इनको नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपसे कुछ स्किप हो चुका है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर जो कि है 01157100971, इस नंबर पे जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस हो चुका है या किसी भी पॉइंट की किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उसको आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। सो वेल, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपसे शेयर कर दिए, अब से सुन लेते हैं एक अदद प्यारा सा ट्रैक और ट्रैक के उस पर हम अपनी बाकायदा तौर पर रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सो जी लिसनर्स, मुझे बताइए कि आपको किस तरह का ट्रैक सुनना है, तो आप सभी के लिए मैं उस तरह का ट्रैक प्ले कर देती हूँ। वेल, मेरे माइंड में तो अभी एक ही ट्रैक आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो ट्रैक बार बार माइंड में आ रहा है तो क्यों ना उसे ही हम प्ले कर दें। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार आपसे होती है मुलाकात।

ओके तो लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी तकरीबन कंप्लीट रेसिपी। सो सबसे पहले हम चिकन ब्रेस्ट को अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके रख देंगे। अब चिकन ब्रेस्ट को साइड से केयरफुली एक डीप पॉकेट की तरह कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप वो ये है कि जब आप चिकन को कम्प्लीटली कट नहीं करना आपने, ठीक है, आपने सिर्फ इतना कट करना है कि अंदर फीलिंग ईजिली आ जाए। सो चिकन की आउटर पार्ट बिल्कुल उसके साथ कनेक्टेड रहे, अदरवाइज़ ये होगा कि आपकी जो फीलिंग है वो बाहर निकल जाएगी और फिर वो उस तरह से टेस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब हम ये करेंगे कि चिकन के दोनों साइड्स पर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, ओरिगैनो और लेमन जूस लगा देंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड करेंगे, साथ ही साथ सीजनिंग को अच्छी तरह से चिकन पर रब करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चिकन को अराउंड 20 टू 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख दें, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम वक्त भी रख सकते हैं, पर आई सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा वक्त रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आपका चिकन मैरिनेट रहता है उतने ही ज़्यादा अच्छे से वो टेस्ट करता है, उतने ही ज़्यादा अच्छे से वो कुक होता है। सो ये था स्टेप नंबर वन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर टू की जानिब। सो अब एक बाउल में हम क्रीम चीज़ ऐड कर लेंगे, इसमें ग्रेटेड मोज़रेला, चॉप्ड कैप्सिकम, स्पिनच और ग्रीन अनियंस, इन तमाम तर को शामिल कर देंगे। अब गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी सॉल्ट, ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस हमारी क्रीमी चीज़ी फिलिंग हो गई तैयार। अब चाहे तो फिलिंग विद मशरूम्स या फिर स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर मी इट्स टोटली एडिशनल और मैं नहीं चाहती कि हम इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अपने रेसिपीज़ में ऐड करें जो कि हमें आसानी से ना मिले। सो आपने लाजमी इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि माइट भी पॉसिबल अगर आप थोड़े से भी इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे करें तो चीज़ टेस्ट को चेंज कर देगी। सो अब जो पॉकेट्स हमने चिकन ब्रेस्ट में बनाए थे उसमें हम चीज़ फिलिंग केयरफुली ऐड कर देंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं आपने शामिल करनी, इससे ये होगा कि जब आप कुक कर रहे होंगे तो वो बाहर निकल सकती है। इट्स को अच्छी तरह से टूथपिक की मदद से सिक्योर कर दें और याद रखें कि सर्विंग से पहले टूथपिक्स आपने लाजमी रिमूव कर देनी है, ऐसा ना हो कि जब आप खा रहे हों तो तब भी वो टूथपिक्स उसके साथ ही लगी रहें। अब आपने एक पैन में मीडियम हीट पर कुकिंग ऑयल गर्म कर लेना है, इसमें बटर भी शामिल कर देना है, साथ ही साथ आपने स्टफ्ड चिकन को पैन में अच्छी तरह से प्लेस कर देना है। अब आपने चिकन को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ हमें सिर्फ आउटसाइड कलर नहीं दिखना, चिकन को अंदर तक आपने कम्प्लीटली कुक करना है, सो इसलिए आपको 4 से 5 मिनट ज़रूर लगेंगे। अगर चिकन थिक है तो हीट को मीडियम लो कर दें और पैन को कवर करके कुक करें, लेकिन अगर चिकन थिन है तो ये इजीली भी कुक हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप ओवन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ये होगा कि आप इसे बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र करके प्री हीटेड ओवन में 190 डिग्री सेल्सियस पर कुक कर सकते हैं, जिससे आपका चिकन बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। सो फाइनली हमारी मज़ेदार सी चीज़ी स्टफ्ड चिकन इज़ रेडी। कैसे लगी आपको ये रेसिपी? आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, बल्कि मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। आप चाहें तो इस रेसिपी को आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, साथ आप मैश पोटैटोज ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज, या चाहें तो आप गार्निशिंग के लिए रोस्टेड वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों ही सूरतों में आपकी जो रेसिपी है वो दिखने में भी प्रेजेंटेबल दिखेगी एंड अगेन टेस्ट में तो अच्छी होगी ही होगी। सो ये थी हमारी आज की 10 स्पाइस किचन की मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी, जिसे आप आसानी 10 से 15 मिनट में घर पर बना सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपके पास ये तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हो मौजूद। वेल, मैंने कोशिश तो यही की है कि हम बहुत मिनिमम से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें और उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें जो घर पर आपको आसानी से मिल सकें। सो कैसे लगी आपको ये रेसिपी हमें लाजमी बताइएगा ट्राई करने के बाद, और ये भी बताइएगा कि आपकी फैमिली को, घर वालों को ये रेसिपी कैसे लगी, इस तरह से आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू।
तो कल फिर आपके लिए मज़ीद इसी तरह की मज़े मज़े की छटपट सी रेसिपी लेकर आऊँगी। वेल लिसनर्स, जो रेसिपी मैंने आपसे फ्राइडे को शेयर की थी उसका फीडबैक मुझे मौसूल हो चुका है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने उस रेसिपी को पसंद किया, ना सिर्फ पसंद किया बल्कि वीकेंड पर भी ट्राई किया। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी सजेस्ट की हुई कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं, चाहे वो कोई रेसिपी हो, कोई बुक हो, कोई म्यूज़िक हो या फिर हो कोई की पॉप सीरीज़। तो लाजमी बताया करें जब भी आप कुछ ऐसा ट्राई करें। वेल लिसनर्स, इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं, आप भी मुझे कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे प्रोग्राम में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और किस तरह की नई रेसिपीज लेकर आनी चाहिए और कौन सी फूड सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम तर सजेशंस को हम वैल्यू करें और प्रोग्राम में शामिल करें। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही डीवा डायलॉग का ये सफ़र जो हमने, मैंने और आपने ठीक 10 बजे शुरू किया था, अब अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ये प्रोग्राम और ये दिलचस्प मालूमात अच्छी लगी होगी। वेल इस हमारे से अगर आपका हो कोई भी कहना तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। एक बार फिर से बता देती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वेल, अगर आप चाहते हैं कि आप बिना किसी इंटरप्शन के हमें ट्यून करें और बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो किस तरह से इंस्टॉल करना है एक बार फिर से तरीका शेयर कर देती हूँ। आपने सिंपल जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और आने वाली पहली एप्लीकेशन जिसका आइकन है पर्पल कलर का, जी हाँ यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और आपको एक बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस हासिल हो। इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ। सो आपने क्या करना है, आपने कहीं भी नहीं जाना, कल भी ठीक इसी टाइम हमें ट्यून करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सो डियर लिसनर्स, जाते जाते आप सभी के लिए एक प्यारा सा ट्रैक मैं प्ले कर देती हूँ। ट्रैक थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। सो जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

Well, सबसे पहले बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन? वीकेंड के बाद ऑलमोस्ट जो है वो दिन अच्छे नहीं गुजरते। मंडे जो है ना वो थोड़ा सा थका हुआ दिन होता है, क्योंकि वीकेंड के बाद दोबारा उस रूटीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, आप सबके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके इस दिन को बनाएंगे मिलकर खूबसूरत, ताकि आपका पूरा वीक जो है वो अच्छे से अच्छा गुजरे। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा, पहले हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा, प्रोग्राम में शामिल होकर कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, या फिर कोई ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहें, या फिर आज के दिन के हवाले से कोई कोटेशन मुझ तक पहुंचाना चाहें, तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको नोट करवाए देती हूँ। 01157100971 ये हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर को नोट कीजिए और हमें मैसेज कीजिए सेव कर लेने के बाद, और बताइए कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे गूगल पर भी सुन सकते हैं, radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है सवाल, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। वो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है वो मुझे जो घर बैठे लोग सुन रहे हैं, मीन्स के हवातीन जो मुझे सुन रही है, बताइएगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मोस्टली जो है वो हवातीन की मदद इस तरह से की जाती है कि या तो उनको ड्रेसिंग सेंस के या ड्रेसिंग फैशन के बारे में बताया जाता है, या फिर कुकिंग की रेसिपी कोई जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर दी जाती है। हाँ मतलब लेकिन अगर आप कोई रेसिपी मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, या फिर कोई रेसिपी आप अपने प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें, सो मोस्ट वेलकम। जो चाहते हैं कि मैं अपने आगे प्यारे लिसनर तक उनको पहुँचाऊँ तो मैं ज़रूर पहुँचा दूँगी। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, और अगर ड्राइव करते हुए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ड्राइव करते हुए ट्रैक सुनने का एक अपना ही मजा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई ट्रैक मैं आपको डेडिकेट करूं ड्राइव करते हुए, तो ये भी मैं कर सकती हूं। और बताइएगा कि दिन कैसा गुजरा, अगर ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं, कामकाज की तरफ निकल चुके हैं, और अगर ऑफिस में जाते साथ थोड़ी सी अनबन हो चुकी है बॉस के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। बस उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेनी है, ब्रेक ले लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाना है, वहाँ पर जाकर आपको रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून कर लेना है, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथी सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM ही है। ये अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप चुपके से जो है वो हेडफोन्स लगा लीजिए और साथ में जो है रेडियो फजा कनेक्ट कर लीजिए, और साथ में आप सलराज को सुन लीजिए, और अगर कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें अपनी पसंद का तो भी मुझे बताइएगा। मोस्टली मंडे के दिन सुबह सुबह उठ के ट्रैक ही सुने जाते हैं, गाने ही सुने जाते हैं, ताकि आपके मूड को अच्छा, आप अपने मूड को अच्छा बना सके किस तरह से, क्योंकि वीकेंड के बाद जो है वो मंडे की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने मूड को हम बेहतर करते हैं ट्रैक्स के साथ। लेकिन आज जो है वो मंडे है, तो मंडे मेलोडीज में जो है मेरी कोशिश ही रहती है कि आपका जो पूरा वीक है वो इस मंडे पे डिपेंड करता है, और अगर आपका मंडे अच्छा हो जाएगा तो सारा वीक जो है वो अच्छे से अच्छा गुजरेगा।

हमेशा की तरह फिर ग्रामर में एक टॉपिक शामिल करवाती हूँ, उस टॉपिक के हवाले से डिस्कस जो है आपके साथ की जाती है। और प्रोग्राम का आगाज़ पहले ट्रैक से किया जाता है, लेकिन आज जो है मैंने सोचा था कि अपनी पसंद का ट्रैक शामिल करूँगी, लेकिन मेरे लिसनर जो है ना वो बड़े होशियार हैं, उन्होंने मुझे फ़ौरन से मैसेज कर दिया कि सुन लो आज आपने मेरी पसंद का ट्रैक जो है प्रोग्राम में प्ले करना है सबसे पहले। सुबह मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, ज़रूर करेंगे आपकी पसंद का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल, लेकिन उससे पहले जो है वो प्रोग्राम में डिस्कस भी कर लेते हैं टॉपिक के हवाले से। मैंने जो आज का टॉपिक डिसाइड किया वो बहुत ही मज़े का टॉपिक होने वाला है, और इसके हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप भी मुझ तक पहुँचाएं तो मुझे बेहद खुशी होगी। आज जो प्रोग्राम में टॉपिक शामिल होने वाला है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होगी। प्रोग्राम में टॉपिक शामिल करेंगे जी पॉजिटिव थिंकिंग। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, अच्छी सोच, मुस्बत सोच, और उस सोच को किस तरह से हमने लेकर चलना है ये हम पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव सोच जो है वो उसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी मुश्किलात को नज़रअंदाज करे, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि मुश्किल को तस्लीम करते हुए भी ये यकीन रखा जाए कि इसका हल तलाश किया जा सकता है, और ये एक अच्छी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। सो आने वाले हर टाइम में, हर हालात में, हर वक्त में जो है वो आप पॉजिटिव ही सोचें। हमारी जो सोच है ना वही हमारे रवैये और हमारे फैसलों पर असर डालती है। अगर हम पर जो है वो मुश्किल को नाकामी, अगर हम अपने आप पर मुश्किल को जो है वो नाकामी समझेंगे तो हमारे होस्टेज जो हैं वो कम होते जाएंगे, और साथ ही में लेकिन अगर हम मुश्किल को एक सबक और एक तजर्बा समझ के हम उसको लेकर चलेंगे तो हम मज़ीद मज़बूत बन सकते हैं।

हाँ मुझे इतना पता है कि जिंदगी में हर चीज़ हमारे हथियार में नहीं होती। ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे हथियार में नहीं होती, लेकिन हर सूरत हाल को देखने का हमारा अंदाज़ ज़रूर जो है ना वो हमारे हथियार में होता है। हम उसको किस तरह से लेकर चलें, अपनी सोच को इतना मज़बूत बनाएं कि हमें हर टेंशन हर मुश्किल जो है वो छोटी से छोटी लगे। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन आप मुझ तक पहुंचाना चाहें, ये था हमारा जी आज का अच्छा सा टॉपिक, ये है बल्कि हमारा आज का अच्छा सा टॉपिक। अभी प्रोग्राम में मेरा आपके दरमियान कुछ ही जो है वो टाइम गुजरा है, और बट मेरे ख्याल में अभी आपके साथ एक ट्रैक भी शामिल कर देना चाहिए मुझे प्रोग्राम में। इस टॉपिक को शामिल पहले कर देने का मतलब ये है कि आप अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाना चाहें तो मुझे लाजमी पहुँचाइएगा, और पहुँचानी भी है क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में अगर आप मुझ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे तो फिर जो है वो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ही सोचना पड़ेगा कि अब जो है वो मैं प्रोग्राम में ट्रैक प्ले कर देती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद है। बट मुझे मसला ये है, वही बात आ गई कि मुझे ट्रैक मिलते बहुत मुश्किल से हैं। खैर प्रोग्राम में शामिल होकर आपने ऐसे ट्रैक शामिल करवाने हैं जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों,

सैड ट्रैक बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे सैड ट्रैक हम शामिल कर देते हैं जिनको सुनने के बाद जो है वो माहौल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, सेंटीमेंट ही हो जाता है, तो हम जो है ना उसको थोड़ा साइड पे ही रखेंगे। सो आपको भी ये बोलेंगे अगर कोई ट्रैक प्ले करवाना हो या फिर कोई ट्रैक किसी प्यार को डेडिकेट करना हो तो हमें अच्छे अच्छे ट्रैक बताइएगा, इंटरटेनमेंट वाले और थोड़े हल्ले गुल्ले वाले, मस्तियों वाले, क्योंकि सैड ट्रैक शामिल करेंगे तो माहौल जो है वो अच्छा नहीं होगा और फिर मंडे का दिन जो बेहतर बनाने की तरफ हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा जो है वो दुखी की तरफ चला जाएगा।

0: दरअसल अभी मेरे पास एक पंजाबी ट्रैक की फरमाइश मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। प्रोग्राम का आगाज़ इसी ट्रैक के साथ उन्होंने बोला कि करना है, सवाल क्यों नहीं आपकी फरमाइशों को मैं ज़रूर पूरा करूँगी। बट जिन नए लोगों ने आज और अभी फजा 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शाम होने का तरीका कर आपको गिन बता देते हैं 01157100971। इस खूबसूरत नंबर बुक कीजिएगा, सेफ और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक प्ले करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि दिल कर रहा है कि आपके साथ गपशप ही की जाए, बट कोशिश ही रहेगी कि आपकी फरमाइशों को भी पूरा किया जाए। इसीलिए मैंने अपना जो है ना लास्ट एक बिन रखा होता है म्यूजिक का, ताकि आपकी फरमाइशें जो है, आपकी इच्छाएं जो है वो मैं अपने लास्ट एक बिन में पूरी कर सकूं। सवाल इसी के साथ साथ अभी जो है वो एक ट्रैक की जानी पड़ते हैं, इस ट्रैक के उस पर मेरी होती है आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1।
1: डरदी बेबे आखदी एनू लब्बा तेरे वर्गी बेबे
2: आई
1: बापू नु कहदी कम
0: 1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पर।
2: आए बंदा
3: किथे एक ते डरदी बहुत है यार,
4: मेरे जे ककरा तू बजदा फिरदा डरदी हो है।
5: ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਆ ਜੂਗਾ।
6: ਲੱਡੂ ਦੇ ਖਾ ਗਈ ਜਬੜ ਜਬੜ ਹੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ
7: ਆ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातक और रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स टाउन, आवाज आप सुन रहे हैं सलूराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सवाल उसी के साथ साथ अभी जो है वो प्रोग्राम में मेरे पास फरमाइश आई थी इस ट्रैक की, और वो बहुत मजे कर ट्रैक है। मुझे लगा कि मेरा जो प्रोग्राम का आगाज हो गया ना, वो इस ट्रैक के साथ दम कमाल वाला हो गया, और मुझे लगता है कि मज़ा भी आने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और फरमाइश मेरे पास आन पहुंची है, पंजाबी ट्रैक की है। सो बस मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी शामिल कर ही दूँ प्रोग्राम में, ताकि आप ये ना समझें कि सलूराज ने पहली फरमाइश तो फौरन से पूरी कर दी है, लेकिन हमारी फरमाइश को साइड पे कर दिया। सवाल दो पल भैया कोल वे मेरे दिला दिया मेहरमा, दो पल, वाह क्या लाइन है। वैसे मैं भी गुनगुना सकती हूँ अगर आप बोलें तो, वरना मैं नहीं गुनगुनाऊंगी। ये ना बोलें कि ना भाई हम चले शो छोड़ के, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं देंगे, हम रहेंगे आपके साथ 2 बजे तक, और आप भी रहेंगे हमारे साथ 2 बजे तक, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, यानी कि वक्त के साथ चलती है। सो लाइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब, मिलते हैं इस ट्रैक के पार। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: www.wolseley.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: Mixing it.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज बाज, आप सुन रहे हैं सरोराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक 2 बजे तक। सोलो म्यूजिक के साथ साथ प्रोग्राम में मैंने ब्रेक से पहले ट्रैक शाम किया था, फिर प्रोग्राम में ब्रेक खाद हो चुकी थी और फिर ब्रेक के उस पर एक और फरमाइशान पहुंची थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी पूरा कर दिया जाए। सर, बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से। अच्छी सोच का मतलब हर वक्त खुश रहना नहीं है, बल्कि अच्छी सोच का मतलब जो है ना, वो हर वक्त खुश रहना नहीं है। इंसान उदास भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है और थक भी सकता है। अच्छी सोच का असल मतलब ये है कि उन एहसास के बावजूद इंसान अपने लिए उम्मीद का दरवाज़ा बंद ना करे। अच्छा, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ना एक मतलब इस तरह के हालात आ जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वक्त हमें ये सिखाता है कि हालात जो है वो सदा नहीं रहते, तब्दीली जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है और तब्दीली आनी ही होती है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होती जाती है। वक्त से पहले कोई चीज़ परफेक्ट होकर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। पॉजिटिव थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि मसला देखकर घबराने की बजाय हल तलाश करें। गलती पर खुद को तोड़ने के बजाय उसे सीखें। दूसरों से जो है वो मुआवजा करने की बजाय अपनी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। माजी को जो है वो बदलने की बजाय अपने आज को बेहतर बनाएं। और सबसे बढ़कर जो है वो अपने आप पर यकीन रखें कि आप हर चीज़ को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आपके लिए कुछ भी ना हो, हर अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग हैं तो। जैसे एक बारिश किसी के लिए परेशानी बन सकती है और किसी किसान के लिए उम्मीद, सो फर्क बारिश में नहीं, उसे देखने के अंदाज में है। याद रखिए कि अच्छी सोच जो है वो ज़िंदगी की मुश्किलात को जादू ही तरह ख़त्म नहीं करती, लेकिन ये हमें उन मुश्किलात का सामना करने के लिए मजबूत ज़रूर बना देती है। इसलिए हालात जैसे भी हों अपनी उम्मीद को जो है वो ज़िंदा रखें। हालात जैसे भी हों अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखिए, आप पर यकीन रखें, अपने आप पर यकीन रखें और हर दिन को जो है वो हर दिन को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज अच्छी सोच कभी ना कभी पूरी ज़िंदगी का एक रुख बदल सकती है।

सो वेल, अगर पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से कुछ आप मुझ तक पहुँचाना चाहें इसकी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे लाजमी बोल चाहिएगा। अगर देखा जाए कि सोच अल्फाज से पहले बदलती है, सो अब ये बात जो है ना वो काफ़ी डीपली है, और इसको समझने के लिए दिमाग भी चाहिए होगा जो मेरे खूबसूरत लिसनर के पास है। सो वेल, इंसान पहले अपने जहन में किसी चीज़ को तसव्वुर बनाता है, किसी चीज़ को तसव्वुर करता है, फिर उसके मुताबिक जो है अमल करता है। इसीलिए अपनी सोच को जो है वो अच्छी सोच में रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फैसलों पर भी असर डालती है। हर मुश्किल में एक मौका जो है वो कभी जो है कोई अगर कोई बंद दरवाज़ा हमारी नाकामी की वजह बन सकता है। सो उसी के साथ साथ कई रास्ते ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए बेहतर होंगे, बल्कि एक नए रास्ते की तरफ हमें इशारा जो है वो मिलता भी है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता तो दूसरे दरवाजे जो हैं बाकी दरवाजे खुल जाते हैं। इस सूरत हाल में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी तरफ मुश्किल आता है तो आपकी तरफ आसानी का दरवाज़ा भी खुलेगा। सो अगर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। अब खुद से बात करने का अंदाज देखा जाए तो हम दूसरों से अच्छे अल्फाज में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप से बहुत सख्ती से बात करते हैं जो हम नहीं कर सकते। या फिर अपने आप को अगर कोई चीज़ सोच लें कि हमने ये चीज़ करनी है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ हमें तंग करे कि भाई ये चीज़ हम नहीं कर सकते। सो इसके बजाय अगर हम कोशिश कर सकते हैं, कहना जो है वो शुरू कर दें, तो एक खूबसूरत तब्दीली हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, और इस तरह जो है वो तब्दीली आएगी भी अगर आप इसको लेकर चलेंगे। तो आपकी सोच आप पे बहुत मैटर करती है, बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं हर मुश्किल टाइम में, हर चीज़ को लेकर आप किस तरह की सोच रखते हैं। अब पॉजिटिव थिंकिंग में जो है वो छोटी मोटी खुशियों की कदर की भी बात की जाती है, तो छोटी मोटी खुशियों की अगर बात की जाए

अच्छी सोच जिंदगी में बड़ी कामयाबियों से नहीं बनती, लेकिन अच्छा दिन जो है वो किसी की मुस्कुराहट, घर वालों का साथ या किसी मकसद की तरफ एक छोटा सा कदम भी खुशी की वजह से बन सकता है। अगर आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बनती है सो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती कि आप इसको किसी को देखकर मुस्कुराएं या मुस्कुराना ही छोड़ दें।

ऑल बात की जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग में ये भी एक चीज़ आ जाती है कि माजी को सबक बनाएं या बोझ. सो माजी को सबक बनाएं, बोझ नहीं. जो गुजर गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसी से सीखा जरूर जा सकता है. माजी को बार बार जो है सोचने की बजाय उसके सबक को अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग में आता है. ज़िंदगी हमेशा हमारी माजी के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन हम अपनी सोच को, अपने रद्द अमल को बेहतर बनाने का एहतियात ज़रूर रखते हैं. सो अंधेरा ख़त्म होने का इंतज़ार करने की बजाय कभी कभी खुद रोशनी बनानी पड़ती है. सो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम हर चीज़ को किस तरह से लेकर चलते हैं. हमारा आने वाला कल हमारे जो है ऊपर बहुत डिपेंड करता है. पॉजिटिव थिंकिंग की असल ताकत जो है वो सिर्फ अच्छी सोच, सिर्फ ये कहना नहीं कि सब अच्छा है. असल पॉजिटिव सोच जो होती है ना, वो इंसान को मुश्किल को देखते हुए भी अपने अंदर ये यकीन रखे कि मैं इस सूरत हाल से निकलने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, ना कि उस सूरत हाल से डर कर इंसान जो है वो छुप कर बैठ जाए कि नो, मतलब ये मेरे मुकाबले में, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं. इस चीज़ को सोचकर अगर आप आगे चलेंगे तो आप डेफिनेटली जो है वो बहुत सी मंजिलों को जो है वो पार नहीं कर पाएंगे. कभी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, और कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं और हमें पता भी नहीं होता. लेकिन कभी कभार जो ज़िंदगी में हमें ऐसा फील हो कि बहुत सी चीज़ें जो है हम नहीं चाहते, फिर भी वो हो रही है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, तो ये किस्म का सबक है आपके लिए. बहुत जल्दी जो है ना उस चीज़ को बदला जा सकता है. तब टाइम जो है वो कुछ भी कर सकता है, कोई मौका हाथ से निकल नहीं जाता. सो कोई जो है ना किसी भी इंसान से हमें मायूसी अगर मिलती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि इससे ग्रेट बंदा नहीं है, और कुछ लोग जिनसे मिलकर आपको ऐसा फील होता होगा कि नो यार, मतलब इसने तो मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस भी लेवल लो कर दिया. सो ऐसे जो लोग हैं ना वो आते रहते हैं ज़िंदगी में. अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आए तो उसको समझाएं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज़ है. पॉजिटिव थिंकिंग का ये कि हम खुद को हालात के हवाले कर दें, और दूसरा ये कि हम खुद से कहें हम अपनी मुश्किलात को खुद तय कर सकते हैं. जो हवा उसमें बदल नहीं सकती, जो हवा उसे बदल नहीं सकती, लेकिन अब मैं क्या करूँगा ये मेरा इख्तियार में है. सो पॉजिटिव थिंकिंग के चंद जो मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे अपने पर्सनल राय से मैं आपको बताना चाहूँ, तो शिकायतें कम और हल तलाश कर ज़्यादा करें. माजी में रहने की बजाय हाल पर तवज्जो दें, अपनी खामियों के साथ अपनी खूबियों को भी देखें. दूसरों की कामयाबी से जलने की बजाय उनसे सीखें. छोटी कामयाबियों को भी अहम समझें. मायूसी के वक्त खुद को वक्त दें, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें. सब सामीन आप मुझे बताइएगा कि अभी तक जितनी भी आपने ज़िंदगी गुजार लिया है, मोस्टली परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन आपकी अभी तक जो ज़िंदगी आपने गुजार लिया, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल थी जिसने आपको तोड़ा नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया. मोस्टली होता है, कुछ लोग मजबूत हो जाते हैं, कुछ लोग पहले से भी ज़्यादा डरपोक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. सो मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी टेंशन, कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसको, जो आपकी ज़िंदगी में आई और आपको एकदम से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर गई. सो पॉजिटिव थिंकिंग में सोच का रवैया जो है वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमें अपनी सोच का अंदाज़ा जो है, सोच का रवैया जो है बदलने की ज़रूरत है. एक ही सूरत हाल जो है वो दो लोगों के सामने आए तो दोनों का जो है रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकता है. एक शख्स इसे अहतमाम समझ सकता है, जबकि दूसरा उसे सूरत हाल को नई शुरुआत समझ सकता है. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया है जिसको फेस करके आपको ऐसा फील हुआ है कि दिस इज़ द लास्ट, मतलब आप अब आगे नहीं बढ़ सकते, आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा ये हमारी ज़िंदगी नई शुरुआत है. सो यही फ़र्क होता है अच्छी सोच में. अच्छी सोच आपके अंदर खुद ब खुद पैदा नहीं होती, बल्कि आप उसको खुद पैदा करते हैं.
आप जब बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से आप अपने आप अंदर पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमारे मुताबिक, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, लेकिन वो हमें कोई ना कोई जो है सबक, तजर्बा या नई सिमत ज़रूर दे सकती है। सो अगर एक खूबसूरत मिसाल देखी जाए, अगर रास्ते में रुकावट आ जाए तो अच्छी सोच ये कहती है कि मेरा रास्ता बंद हो गया, मतलब गलत सोच जो है वो ये कहेगी कि मेरा रास्ता बंद हो गया। लेकिन जबकि अच्छी सोच जो होगी ना जहाँ पे, वो ये कहेगी कि शायद मुझे कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। और यही बात होती है, यही होता है कि आप दूसरा रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। अच्छी सोच का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मसाइल नहीं होंगे, टेंशनें नहीं होंगी, परेशानियाँ नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मसाइल के बावजूद हम अपने अपनी उम्मीद, अपना हौसला और अपनी कोशिश को ज़िंदा रखें। अपनी ज़िंदगी के हर सफ़े को अपनी माजी से नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हर सफ़े को पढ़ने का अंदाज़ ज़रूर बदला जा सकता है। इसीलिए हालात से पहले अपनी सोच को मजबूत बनाएं, क्योंकि एक मजबूत सोच जो है ना वो इंसान को मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। बहुत से रास्ते दुश्वार होते हैं, लेकिन उनको हम तय कर लेते हैं, हमारी सोच हमारे साथ जब तक खड़ी है तब तक हम हर मुश्किल को तय कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में अपनी तवज्जो की बात की जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारे पास मौजूद होती हैं लेकिन हमें वो चाहिए नहीं होती। मनफी सोच जो है ना, गलत सोच जो है ना, वो असर अक्सर जो है ना हमारी तवज्जो अपने ऊपर से भी हटा देती है, जबकि अच्छी सोच जो है वो अपनी मौजूदा नियमतों, सलाहितों और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख के हमें बहुत कुछ सिखाती है। मसलन अगर किसी इंसान के पास 10 अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो वो पूरा दिन इसी एक कमी के बारे में सोचता रहता है और सोच सकता है। लेकिन अगर वही अपनी तवज्जो उन 10 अच्छी चीज़ों पर करे तो उसका जो एहसास है ज़िंदगी का वो बदल सकता है। हम लोग जो है ना वो पॉजिटिव सोचने की बजाय हम लोग ये सोचने लगते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में सोचेंगे कि ना यार ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, या ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये चीज़ मिस है। सुबह मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, उस पर शुक्र करें। अगर आप मौजूदा चीज़ों का शुक्र करेंगे तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो भी आपको नवाजी जाएगी, वो भी ऊपर वाली की ज़ात आपको देगी।

सोल उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में गप शप काफ़ी ज़्यादा हमारी चल पड़ी है, बट अभी जो है वो मूड को थोड़ा सा हिला देते हैं आपके दरमियान, अपने दरमियान ट्रैक शामिल करके। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि प्रोग्राम में जो है वो आपकी पसंद के ट्रैक्स को शामिल किया जाए। मेरे पास बहुत से अभी एक ट्रैक की फरमाइश आई है और काफ़ी सारे ट्रैक्स ऐसे आए हैं जिनको मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहती भी हूँ, नहीं भी करना चाहती, क्योंकि सैड ट्रैक शामिल करने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं बन रहा, क्योंकि माहौल जो है वो सेंटीमेंट ही नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो ये मसला ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सी फरमाइशें ऐसी मौजूद हैं, पंजाबी ट्रैक्स भी हैं, बट मैं आपकी फरमाइशों को पूरा नहीं करूँगी। ये नहीं बोल रही कि मैं आपकी फरमाइशें प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगी, मैंने अपना लास्ट सेगमेंट रखा होता है, उस सेगमेंट को हम लेकर चलेंगे आपके साथ, बट अभी के लिए प्रोग्राम में जो है इस फरमाइश को पूरा कर देते हैं। वेल स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप। अभी इस ट्रैक के उस पार मेरे आपके दरमियान हायल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद हम रहेंगे आप साथ साथ। अभी तक के लिए साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

ऑल इसी के साथ साथ अभी जो है ना वो तकरीबन मेरे और आपके दरमियान 4 मिनट तो शायद बाकी हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ने के लिए, फिर जो है वो आप हमारा अगला सेगमेंट स्टार्ट हो जाना है म्यूज़िक का। सो म्यूज़िक के सेगमेंट में जो है वो अपनी फरमाइशों को पूरा करवाइएगा, उन बातों को, उन ख्वाहिशात को, उन इच्छात को जो आपकी पूरी मैं नहीं कर पाई काफ़ी टाइम से। बहुत से मैसेज ऐसे हैं जिनको मैं रीड नहीं कर पाई, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, अभी मैंने बैठ कर जो है ना मैसेजेस रीड किए हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स की फरमाइश मेरे पास मौजूद है। सो मेरी कोशिश है कि मैं उनको पूरा करूँ, लेकिन आपने मेरा साथ देना है और साथ देते हुए जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी हमें दिलाते रहना है। अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में एक और फरमाइश को शामिल करने का वक्त है हमारे पास। वही मसला है कि मुझे ट्रैक ढूंढने में बहुत मसले होते हैं, या तो मुझे ट्रैक मिलता नहीं है या फिर शायद मैं जान के ढूंढना नहीं चाहती। वो कहते हैं ना गपशप के साथ करना चाहती हूँ, शायद इससे लिए सलराजा हैं वो इस तरह से करती हैं। बट अभी जो है वो बड़ी खूबसूरत ट्रैक की फरमाइश मेरे पास पहुँची है, सो आइए इसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बट ये मेरे ख्याल से किसी ड्रामे का ओएसटी है और देख जरा प्यार से ड्रामे का नाम है, और इस ड्रामे का ये ओएसटी है बहुत मज़े का। मेरे ख्याल से मैंने इस ड्रामे को सही देखा हुआ है, बहुत मज़े का, अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की स्टोरी है इसमें, मतलब हर किसी को बेवजह जो है वो सज़ा मिल रही है, गलती नहीं है तब भी सज़ा मिल रही है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो गलती जो हमें वो गलती लग रही है वो गलती नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बनने वाली है। सवाल आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब। इस ट्रैक के उस पार मेरी आपको दरमियान हाल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
0: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलराज की, जहाँ पर हमारा अगला सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगला सेगमेंट वाला है कौन सा है? म्यूजिक का सेगमेंट। अभी हम म्यूजिक को लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम का। सब मजे मजे के ट्रैक प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं और आपको सुनकर मजा भी आने वाला है। अभी मेरे पास जो है, मैंने सोचा था कि अपनी पसंद का ट्रैक शामिल करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश मेरी फरमाइश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप अपने खूबसूरत से टाइम से, कीमती टाइम से मेरे लिए 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। अपनी फरमाइशों को बाद में पूरा कर लेंगे, पहले आपको पहले रखेंगे। वाह, पहले आपको पहले रखेंगे, क्या लाइन बनी है। मतलब मुझे कभी कभार खुद समझ नहीं आता मैं क्या बोल देती हूँ, लेकिन बोलती जो भी हूँ वो सही से बोल देती हूँ। बस अभी जो है वो प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ। इस ट्रैक के उस पर भी मेरी रहेगी आपसे मुलाकात, मजीद गपशप के साथ साथ नहीं बल्कि मजे मजे के ट्रैक्स के साथ। और रुख पोश मूवी से लिया गया ट्रैक, इसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसके उस पर मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। आवाज आप सुन रहे हैं सलोराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सवाल उसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में एक छोटी फरमाइश को पूरा किया था, रूपोश मूवी से लिया गया ट्रैक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा।

लोग गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा, लेकिन अभी प्रोग्राम में मेरे पास फरमाइश जो मौजूद है उसको भी पूरा कर देते हैं। अभी जो मैं ट्रैक शामिल करने वाली हूँ ये मैं इतना ज़्यादा मतलब मैंने सुना नहीं है, सिर्फ इसको रील में मैंने देखा, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए रील में गिरा गया तो तब सुन लिया, वैसे इसको यूट्यूब से कभी सर्च करके नहीं सुना। बट अभी आपके साथ इस ट्रैक को सुन लेते हैं, इसकी फरमाइश मेरे पास मौजूद है। अभी अभी रिसेंटली ये ड्रामा ख़त्म हुआ है, जंजीरें ड्रामा, और जहाँ ड्रामा मैंने देखा है लेकिन इसका ओएसटी मैंने अभी तक नहीं सुना। सवाल आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब। इस ट्रैक के इस पार में रहेगी आपसे मुलाकात। एक बार फिर से बोलूंगी, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलू राज।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और हम बिल्कुल भी तनहा नहीं है, हमारे साथ आपका साथ है और इस साथ को मजीद खूबसूरत बनाता है आप उन नए लोगों का साथ जो जिन्होंने मुझे आज रबी 97.1 एफएम पे ट्यून किया है। सवाल इसी के साथ साथ अभी तकरीबन मेरा दरमियान काफ़ी कम वक्त रह चुका है।

लगेगा वाला आज का साथ आपको कैसा लगा, प्रोग्राम में आज का टॉपिक जो था वो आपको कैसा लगा, और साथ ही में आपको आज जरूर आज का साथ कैसा लगा। पूरी कोशिश की कि आज का दिन अच्छा से अच्छा बनाया जाए ताकि आपका पूरा वीक जो है अच्छे से गुजरे, स्विंग के गुजरे। अल्लाह मेरी आवाज़ जुबान को क्या हो गया, गुजरे कहना था, इस वजह से मेरे मुँह से कुछ और ही निकल गया, बट है कोई बात नहीं, जुबान जो है वो फिसला जाती है। जहाँ पर जब आप जैसे खूबसूरत लोग सामने होंगे तब जुबान तो फिसलाएगी ही ना। आप मुझे देखे बगैर इतनी मोहब्बत देते हैं तो मेरा भी काम बनता है कि भाई आपके प्यार में थोड़ा सा पिघला के जुबान जो फिसल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। दिल का है ये बंजारा। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना इतना ज़्यादा प्यार हमें देते हैं, और साथ ही में इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस पर अमल करते हैं, उसको सुनते हैं दिल लगा कर। जिन्हें लोगों ने प्रोग्राम में शामिल होना है और शामिल होकर अभी जो है वो ट्रैक को प्ले करवाना है, सो अभी तो मैं जा रही हूँ क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। आप यूँ कर सकते हैं कि आप हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी, तो आप उनसे रब्ता कीजिएगा, उनको मैसेज कीजिएगा और उन्हें अपनी पसंद का ट्रैक प्ले करवा लीजिएगा। धीमी धीमी सी हंसी। बिल्कुल मन नहीं कर आपको छोड़ के जाने का, यकीन जाने मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ बातों में बातें करती ही रहूं। ये मिले ना मिले। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार आने के लिए एक बार जाना तो पड़ेगा। सो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन कल का दिन अगर आप अपना टॉपिक कोई अपनी मर्जी से शामिल करवाना चाहते हैं प्रोग्राम में लाजमी बताइएगा। मैं जो हूँ उसी तरह का फिर वही टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करूँगी, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो दिल का है ये सवाल। इसी के साथ साथ अभी तकरीबन मेरे रात के दरमियान जो वक्त हुआ जाता है सूर्य के डाल मशीन पे वक्त हुआ जाता है मेरे रात के दरमियान है कमर्शियल ब्रेक का, नहीं अब तो दूरियों का समय आन पहुंचा है। दिल का है ये सवाल, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055, we'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot, search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: Commercial time.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब। उम्मीद करते हैं कि आपका जो वीकेंड है वो बड़ा अच्छा गुजरा होगा और आप सब ने जो अपनी वेकेशन वगैरह प्लान की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने वीकेंड को एंजॉय किया होगा। जो लोग नहीं कर पाए उनकी वो शिफ्ट्स थी ओवर टाइम और इस तरह के जो बिजी स्केड्यूल में थे, तो उनके लिए भी गुड विशेस हम रखते हैं कि उनको भी मौका मिले, वो अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर सकें अपने काम के साथ साथ।

आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो होगा बैलेंस लाइफ। वो सारे लोग सुनते हैं और कहते भी रहते हैं कि बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, कि अपने काम को भी टाइम देना चाहिए और साथ साथ जो है अपने जो सेल्फ है उसके लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने जो हल्का अहबाब है दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इस पर थोड़ी सी डिबेट करेंगे कि इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं और बैलेंस लाइफ का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। हम अपने नए जो लिसनर्स हैं जिन्होंने फ़ज़ा 97.1 को ट्यून इन किया है, उनके लिए लाइव कॉल और मैसेजेस का जो एक सिलसिला है उसको भी मुतारफ़ कराते चलें। और उसका एक नंबर है, वो आप अपना कीपैड ओपन करें और इसको जो है डायल करेंगे 01157100971। इस पर हम आपकी जो मैसेजेस और कॉल्स को वसूल करेंगे। और आप जो है हमारा जो रेडियो चैनल है इसको आप www.radiofaza.co.uk से भी लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। और हमारी एक एप्लीकेशन है रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM, इसको आप प्ले स्टोर और प्ले जो है एप्पल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है ना वो हमारे जो प्रोग्राम है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मज़ीद क्लैरिटी के साथ आप जो हमारे लाइव शोज़ हैं वो आप सुन सकते हैं।

अभी हम एक बहुत प्यारा सा जो सॉन्ग है उसके साथ अपना स्टार्ट लेंगे, और इसी तरह आप अपने किसी को शो सॉन्ग वगैरह डेडिकेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर आपके पास मौजूद है। ट्रैक उस पार जो है आपके साथ मजीद गपशप होगी।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
6: रेडियो बजार 97.1 FM।
0: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।

वेलकम बैक जी। अभी हम दो सॉन्ग सुने हैं और उस सॉन्ग्स के बाद एक बहुत प्यारी सी कमर्शियल ब्रेक आई, उससे लौट के आ चुके हैं। अगर आप अपना बिजनेस और अपना जो बिजनेस की प्रमोशन के लिए थोड़े से परेशान हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टीम अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को चार के बजाय आठ चांद है बेसिकली फोर मून सेट कर सकती है आपके लिए। करना आपने यह कि आपने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर और अपना जो कंटेंट है वो हमारे साथ शेयर करना है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो उसको डिज़ाइन करेगी और आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगी उसको मार्केट करने में। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड ऐप और मैं हूं आपका होस्ट आरजे काशिफ समीर। और आज हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड लाइफ। बहुत सारे लोग जो है सारी ज़िंदगी यही उनकी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजर जाती है कि कभी हम भी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकेंगे। और बैलेंस लाइफ गुजारना हर बंदे की एक जो है वो एक ड्रीम है, एक ख्वाहिश है। लेकिन बहुत बार आपने बड़े एक अपने फैमिली या फ्रेंड्स के इवेंट्स होते हैं, उधर जाना होता है, तो लेकिन आपको जो है वो वर्क अलाउ नहीं करता कि आप उस जो इवेंट को इंजॉय कर सकें। तो मैंने इस जगह एक पढ़ा था कि कहता है कि 10% लोग जो है वो बैलेंस्ड लाइफ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और 90% लोगों को एक्सट्रीम एंड पे रहना पड़ता है। या तो आप एक ब्रिज की एक साइड भी होंगे या जो है वो दूसरी साइड भी होंगे, आप मिडल में नहीं रह सकते हैं। आजकल जो हमारे काम का जो सिचुएशन बन चुकी है कि हम डे एंड नाइट इसमें बिजी रहते हैं और हमारा जो नंबर्स की दौड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आजकल जो है वो इसका क्या कहते हैं दिखलावा और जो एक सोसाइटी में नॉर्म्स बन चुकी हैं कि हर चीज़ को हमने वो रील्स और अपने स्टेटस वगैरह पे सेट करना है और लोगों के स्टेटस वगैरह देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें समटाइम होती हैं वो हमारे लिए अननेसेसरी होती हैं, लेकिन हमको वो भी परचेज़ करनी पड़ती हैं अपने लाइफ स्टाइल को उनके जो अपनी सोसाइटी के साथ मीटअप करने के लिए। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? तो आप अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करते चलेंगे। उसके जो सबसे जो इजीएस्ट वे है वो हम आप जो हमें मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे फजा 97.1 FM का जो लाइव नंबर है वो हम आपको बताते चलें, 01157100971। बैलेंस लाइफ का ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना एक तो जो है अपने काम को 12 घंटे दें और 12 घंटे जो है ना आप जो है अपनी नींद और छोटे मोटे घर के कामों को दें, तो ये दिस इज़ नॉट अ बैलेंस लाइफ। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। जैसा कि मैं अपना आपको बताऊं कि मुझे जो है ना हमारा एक जो मेन मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दो जगहों से आता है। वो एक तो हमारा जो है वो फैमिली गैराज है ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का, और दूसरा जो मेरा ऑनलाइन काम है वो मैं उसको भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो रेडियो मैं आरजे बनाऊँ ये मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश थी बड़े अरसे से, तकरीबन 10-15 साल पहले से। तो बड़ा मैंने वेट किया है इधर तक पहुंचने के लिए और बड़ी मुश्किल से जो है ना अपना स्केड्यूल डिज़ाइन करता हूँ। बहुत सारी जो दोस्तों का टाइम और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे छोड़नी पड़ती है आप लोगों से बात करने के लिए, तो इसको बैलेंस करते करते मुझे सम टाइम मैं अपनी दोनों काम से भी लेट हो जाता हूँ। सम टाइम इधर भी 2-4 मिनट 10 मिनट लेट पहुँचना होता है और इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो क्या करें कि ज़िंदगी में बैलेंस भी तो चाहिए। अगर आपकी भी इसी तरह की सिचुएशन चल रही है तो आप हमारे साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और हमारा जो ये प्रोग्राम है ड्राइव जोन, इसका मेन पर्पज़ एंटरटेनमेंट है, ये नहीं रुकनी चाहिए। अभी हमें एक सॉन्ग डेडिकेशन की जो है ना वो रिक्वेस्ट आई है, तो मैक्सिको कोका जो गाना है वो करण ओजला का, वो हम उसको प्ले करेंगे अभी अपने शो में। इस तरह आप

भी अपने जाने वालों को, अपने जो बड़े करीबी जो दिल के करीब हैं उसको कोई सॉन्ग या कोई मैसेज अपना फॉरवर्ड करना चाहते हैं वाया लाइव रेडियो शो? वी आर अवेलेबल राइट नाउ।

भी बहुत सी खूबसूरत से ट्रैक से हम लोड के आ चुके हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट की बात हो रही थी। कभी मौका मिले कि समुंदर के जो किनारे पे जाके हम जो है वाइन पी सकें, वाइन में आपका जो है ना वो कोई और ड्रिंक भी हो सकता है। बैलेंस लाइफ मीन के आपको जो है ना मेंढक जो है वो जिंदा मेंढकों को एक डब्बे में बिठाना है, वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं किसी हद तक। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जॉब और बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब वो घर पे जाते हैं तो उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं होता, और अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके भी साथ बात करने को दिल नहीं करता। बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है 14-16 घंटे काम करके। एक चीज़ जब हम अचीव करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। उसमें से एक तो हमारा सेहत है, हमारी जो हेल्थ है वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बैलेंस अकाउंट में बैलेंस बनाते बनाते नंबर्स को ऐड करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी सेहत हमारी जो पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है। तो फिर उसी सेहत को हम दोबारा रिटेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए, वो जो जितनी हमारी अर्निंग होती है, जो सेविंग होती है, उसको दोबारा हम डॉक्टर्स और जो है ना हो हैवी किस्म के टेस्टिस वगैरह और इस तरह के बिल्स में हमारा वो जो जितनी सेविंग है वो चली जाती है। जब हम सेहत के पीछे भागते हैं तो हमारा कैरियर और दूसरी चीज़ें वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते और उनकी लाइफ में जो है वो इंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होती है। जब भी उनसे बात करें तो वो कहते हैं अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, फिर काम तो कर लेंगे, अब कहीं कौन सा कहीं भागते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम जैसे लाइफ में देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क के साथ डेडिकेटेड होते हैं, तो वो तकरीबन मैक्सिमम उनका जो टाइम होता है वो अपने काम को देते हैं। लेकिन जब उनकी के साथ बैठते हैं गपशप करते हैं तो पता चलता है कि वो जो उनकी फैमिली लाइफ है वो किसी हद तक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो मेन रीज़न क्या बनती है कि हम अपने फैमिली वालों के लिए बैलेंस जो कहते हैं बेसिकली टाइम नहीं निकाल पाते। जैसे भी मैं तीन जगहों में बिजी हूँ तो मेरे पास अपनी फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं है जितना मैं मुझे देना चाहिए, और साथ में मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे से नाराज़ रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, हमें टाइम नहीं देते। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो मुझे जो इन्वाइट तो करते हैं लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाता अपने इस कैरियर को लेकर।

भी हम एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक से लौट कर वापस आ चुके हैं और आप सबको वेलकम करते हैं फैजान 97.1 FM एंड डैब में। आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड लाइफ पर, और बैलेंस्ड लाइफ जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत बात एक बुक में लिखी थी। कहते हैं कि बिजनेस और जो जॉब है वो जिंदगी के लिए बनी है, और ना कि जिंदगी जो है वो बिजनेस और जॉब के लिए बनी है। बहुत सारे लोग हैं वो सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनके फैमिली, उनके रिश्ते और उनका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाती हैं। एट द एंड उनके पास कई किसी हद तक जो है वो मनीटरी जो है ना वो एसेट्स तो आ जाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते उनसे छूट जाते हैं, और उनकी जो ज़िंदगी में खुशी वाले काम थे, जो मोमेंट्स वो इन्जॉय करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाते। इसी तरह जो है ना वो लाइफ में जब कहीं उनको बीमार होते हैं, और जब बंदा बीमार होता है तो वो उसका वो काम और इन चीज़ों से जो है वो वास्ता ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो तब बंदे को सोचने का और जो चीज़ें रियलाइज़ करने का मौका मिलता है। तो फिर कहता है कि यार मैं जो ज़िंदगी जीना चाहता था वो तो नहीं जी पा रहा, लेकिन जो मैं जी रहा हूँ वो मेरी ख्वाहिश नहीं है। टॉपिक थोड़ा सा हैवी है क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो एंटरटेनमेंट है और ये ड्राइव जोन है, लेकिन जब बंदा गाड़ी चला रहा होता है और ड्राइविंग मोड में होता है तो उसका माइंड जो फुली कंसंट्रेटेड होता है और वो चीज़ें ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। तो किसी एक की भी लाइफ में अगर थोड़ा बहुत बैलेंस आ जाता है तो हमारा जो शो का मेन पर्पज़ है वो आज के दिन का वो जो है वो हमें अचीव हो जाएगा। अपनी खुशी के लिए टाइम निकालना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इजाज़त नहीं देती हैं, अभी माहौल इस तरह का बन गया, लेकिन जो लोग इंजॉय करना जानते हैं और जो हिम्मत रखते हैं और कॉन्फिडेंस रखते हैं तो इंजॉय ऐसी है कि जैसे आप चाय पीते हैं उसके ऊपर एक मलाई की परत आ जाती है एक वो जो है ना। तो जिनको जिन्होंने अच्छी लाइफ गुजारनी है और ज़िंदगी में खुशी लेके आनी है तो वो उस टेंशन वाली मलाई को समय लेके वो एक टेंशन की वो परत है जो आपकी खुशियों के ऊपर आ चुकी है, तो उसको साइड से करके नीचे से चाय पी लेते हैं। तो सम टाइम अपनी लाइफ जो है उसको खुद डिज़ाइन करना पड़ता है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए। टोटल बैलेंस तो नहीं आ सकता क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कहीं पे हमने जाना होता है तो सम टाइम गाड़ी पंक्चर हो जाती है और वेदर ख़राब हो जाता है, तो जो हमने महीनों से वो चीज़ प्लान की होती है तो उधर तक हम टाइम पर नहीं पहुँच पाते। सम टाइम हमें लगता है कि कहीं इधर हमने जाने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं पहुंच पाते, तो सम टाइम उसी में हमारे बेनिफिट होता है।

आप लोगों की कॉल्स और जो है मैसेजेस को हम ज़रूर जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और उसके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है नए आने वाले लोगों के लिए वो हम शामिल करते चलें, 0115-71-00971। ये हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पर आप जो अपनी कोई डेडिकेशन किसी को करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी हमें एक सॉन्ग की जो है वो रिक्वेस्ट आई है, तो वो हम उसको अभी प्ले करेंगे, और उसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जो है ना वो गपशप होगी।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

वेलकम भाई, अभी हम लौट के आ चुके हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी कमर्शियल ब्रेक से। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना चाहते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल वे में, तो वी आर अवेलेबल। हमारी जो टीम है वो बहुत एक्सपर्ट है, तो अपने जो रेडियो चैनल है इसके थ्रू आपको जो है ना वो एक अच्छी जो हमारी लिसनर बेस है उधर तक आपका जो पैगाम है वो पहुँचाएंगे और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करेंगे। करना आपने ये है कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी है, और हमारी जो एक्सपर्ट मार्केटिंग टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपके जो बिज़नेस में आपकी हेल्प करेंगे मार्केट करने में। एक एक्सपर्ट बंदे में और जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है काम करने में। जैसे आप एक नॉर्मल ड्राइवर हैं और जस्ट आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली एक सेफ ड्राइविंग करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो ड्रिफ्टिंग में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो गाड़ी वही होती है लेकिन चलाने वाले में डिफरेंस होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करवाना चाहते हैं तो लाइकवाइज जैसे आप आपको एक एग्जांपल दी है इसकी ड्रिफ्टिंग की, तो हमारी जो टीम है वो रियली एक्सपर्ट है अपनी जॉब में। दे कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड लाइफ। हमारा बेसिकली जो फैमिली बिजनेस है वो गैराज का और रिपेयरिंग का काम है गाड़ियों का। तो आज थोड़ा काम स्लो था और मेरे घर पे जो है वो मेरी इन लॉ फैमिली आई हुई थी, तो मैंने जो देखा कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है और काम कम है, तो मुझे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय टाइम ऑन सोशल मीडिया आई शुड यूटिलाइज मुझे ये टाइम जो है वो एक जो पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने हिम्मत करके बड़े भाई से बात की, तो वो कहता यार हमें भी नज़र आ रहा है काम नहीं है, तो अभी आप घर जा रहे हैं तो हमें भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने बिज़नेस को वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं बेसिकली ना। मैंने कहा आप भी जो है ना वो शटर क्लोज करें इन अ फनी वे, तो लेट्स गो टू होम। तो फिर मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कॉन्फिडेंस गेन करके उनसे इजाज़त ली है, और थोड़ी सी वो बड़े भाई हैं तो थोड़ी बहुत इंसल्टिव मूड था उनका, तो उन्होंने अपने जो है ना वो बहुत सारी जो ग्रेवियंस हैं अपनी जो परेशानियाँ मेरे साथ शेयर की है। कहते हैं कि यार ये चीज़ें हम जिंदगी में हम भी करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू आवर बिजनेस डेडिकेशन और जो कस्टमर्स हैं वो जो उनका पता नहीं होता कि कब वो आ जाएँ, तो हम तो इधर ही हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ज़्यादा लेके तो जो है ना वो अपने रिलेटिव्स के साथ जो है ना अभी अपना 2-3 घंटे स्पेंड किए हैं। उसके बाद जो मेरी फीलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह समटाइम आपको भी लगता है कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो उधर जब मीटिंग के लिए जाते हैं या किसी से आपने मिलना होता है, तो उधर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहकर भी अपने जो सीनियर्स हैं या जो हाई इन कमांड है उनसे बात नहीं कर पाते, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में समटाइम जो है वो परमिशन भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो टाइम निकालने वाले होते हैं, जो मूवमेंट्स को अल्टरनेट करना जानते हैं, तो वो टाइम अपने लिए निकाल ही लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस लाइफ है, और बैलेंस लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना अपने काम और सोने को टाइम दें, इसमें आपकी सेहत आ जाती है, आपकी जो बेसिकली मेंटल हेल्थ है उसके लिए आपका रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ये भी बैलेंस लाइफ का एक मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन जब हम जॉब से या बिज़नेस से या कहीं थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो हमारे पास जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं ये हमारा मोस्ट ऑफ़ द जो प्रीशियस टाइम है उसको जो है वो कंज्यूम कर जाते हैं। तो हमारे पास अपने लिए, अपनी रूह के लिए, बेसिकली सोल के लिए, सोल को भी हमारी जो है ना वो अटेंशन की ज़रूरत होती है कि हमें जो बॉडी रिलैक्स हो। तो जब हम इस पर उंगली रखते हैं तो 2-3 घंटों की समझ ही नहीं आती। तो जब हम फैमिली में भी जाते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा जो आजकल एनिमी है और जो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारी खुशियों का दुश्मन है वो समटाइम है, तो बड़ी हेल्पफुल चीज़ है हमारे जो सोशल मीडिया की डिवाइसेस हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं फौज ज़्यादा फ़ायदा देने के बजाय हमें या कहीं ना कहीं वो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा रही हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, उसका जो इस्तेमाल है वो डिपेंड करता है कि आप लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और टैक्सीज और जो हमें मोर्टगेजेस और उस तरह के बहुत सारा जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में, क्योंकि इंसानी जो लाइफ है ये वाहिद ऐसी ज़िंदगी है जो इंसान गुजारे, इनको ज़िंदगी में अर्न करना पड़ता है हर चीज़ को जो है ना वो लाइफ को चलाने के लिए। बाकी बहुत सारी जो अदर ऑल स्पीशीज़ हैं, जो द लिविंग जो क्रिएचर्स हैं, उनको जो है वो काम पर नहीं जाना पड़ता, वो बिज़नेस नहीं करते, वो जॉब नहीं करते, वो भी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उनका वो बैंकिंग और इन जिस तरह की चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जंगल में भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंस माहौल रहता है और ज़िंदगी की कश्मकश और मौत की जो है ना वो उधर दौड़ होती है, लेकिन वो फिर भी इंश्योरेंस नहीं करवाते। लेकिन इंसानों को इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ों के लिए, एक तो अपनी फूड और इस तरह की चीज़ों के लिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इससे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे आजकल जो है जिस इन्वायरमेंट में पूरी दुनिया में लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो हमारे एक्सपेंस बढ़ चुके हैं मॉडर्न ईरा में, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जब इसी तरह से जब हम ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमें जो बैलेंस लाइफ का जो कंसेप्ट है वो पढ़ते तो ज़रूर हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को करने में हम हिचकिचा जाते हैं, नेक्स्ट मंथ पे डाल देते हैं कि नेक्स्ट मंथ आई विल ट्राई टू मेक बैलेंस इन माय लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो सारा दिन वो मदर्स का जो वर्किंग, यूके में तो मदर्स भी वर्किंग में रहते हैं और फादर जो हैं वो दोनों पार्टनर्स काम करते हैं, ये इकॉनमी ऐसी है, तो बच्चों को हमें जो है वो डे केयर में उस तरह की जो है ना वो प्रोटेक्शन में छोड़ना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हम दूसरी दुनिया से हमारे पास पैसे तो ज़्यादा होते हैं और जो हमारी परचेजिंग और बाइंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो फैमिली कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे पास अपने ओल्ड एज जो घर पे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए टाइम नहीं है, तो अपने बच्चों के लिए भी उतना टाइम नहीं है जिनके साथ हम प्रॉपर जो पेरेंटिंग वाली फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकें और उनका जो बचपन है वो हम इंजॉय कर सकें। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? अगर जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग। आज इस दौर में जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो हमें खुशी जो है वो बहुत कम मिलती है, बेसिकली हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले जब ये डिवाइसेस और इस तरह के मामलात नहीं थे, तो लोगों के लिए गपशप और जो है ना वो कन्वर्सेशन के लिए टाइम ही टाइम हुआ करता था। जब मेरा जो बेसिक कनेक्शन है बैक होम कंट्री वो पाकिस्तान है, लाइकवाइज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये तकरीबन 78 ईयर्स बैक जाएं तो वो तकरीबन एक ही था, ये सारा खिता सब कंटिनेंट था। तो तब लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम ही टाइम हुआ करता था, पैसे का जो है वो दिखलावा बहुत कम था, तो लोगों के पास ज़िंदगी में जो है बातें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो बच्चों को स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे, तो बड़ों से एक्सपीरियंस की बातें सीखने में जो है वो मिल जाया करती थी। लेकिन आज ये वक्त आ चुका है कि हम बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो यंग जनरेशन, उनमें गैप जो बेसिकली टेक्निकल गैप बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के पास बैठने का वक्त नहीं है। जब हम लोगों के पास वक्त होता है और हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हर कोई अपने मोबाइल में बिज़ी है, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी। जब हम इन चीज़ों में गिरे हैं, लेकिन सम टाइम हमें फील होता है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शैलो चल रही है और बहुत सारी इसमें कमी है जो इनविजिबल है, जो हमें नज़र नहीं आती।

अभी हमें एक सॉन्ग की जो रिक्वेस्ट आई है, रेन ओवर मी बाय पिटबुल एंड मार्क एंथनी, इस प्ले ट्रैक को हम प्ले करेंगे अपने शो में। तो आप भी अपनी मर्जी का ट्रैक प्ले करवा सकते हैं।

हम आज जो हमारा टॉपिक है वो बैलेंस लाइफ है, और जो नए जुड़ने वाले हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने इस शो में। इस टॉपिक का मतलब ये है, और जो मेन पर्पस था इसको आज डिस्कस करने का, वो ये था कि हम जिंदगी में अपने लिए टाइम निकालें, और जिंदगी एक बार मिलेगी, जो है ना वो दोबारा नहीं मिलती। तो ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी, और जो अपने अकाउंट में और जो है वो बैलेंस ऐड करने के लिए नहीं बनी। ज़िंदगी में एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें वो काम ज़रूर करने चाहिए जिससे हमें जो है वो एक खुशी, तसल्ली, और जो है ना वो ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जब हम जो जिनसे हमें सुकून मिले। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमें ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। जैसा कि मुझे रेडियो में काम करना और जो है आरजे बनने की मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी। आई वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम टू बिकम एन आरजे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो मुझे काम करने होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, बिज़ी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है और इसके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने लिए टाइम निकालें, अपने जो है ना वो अपने रिलेटिव्स जो जिनसे आप प्यार करते हैं तो उनको आप कॉल करें, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। ज़िंदगी में जब बंदा ओल्ड एज में चला जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जब हम सुनने में आया है और देखते भी हैं, जब डेथ बेड पे होते हैं तो हमें जो है ना वो ये नहीं याद, हम ये चीज़ें डिस्कस लोग नहीं करते डेथ बेड पे के जो हमने कितना मतलब मनीटरी, हमने कितनी चीज़ें अचीव की हैं, हमारे पास एसेट्स कितने हैं। तो तब जो फ्लैशबैक ज़िंदगी का सामने आता है वो यही होता है कि हमने अच्छा टाइम कैसे गुजारा है, हमारे पास यादें कितनी हैं, और ज़िंदगी में हमने खुशी के लम्हात कितने गुजारे हैं।

जैसा कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और माहौल और जो है ना वो शॉप से जो इजाज़त तो नहीं मिलती और वाइफ भी जाने नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं जो है ना जब मैंने ट्रैवलिंग करनी होती है तो सारी चीज़ें मॉनेटरी वैल्यू और जो है ना वो ओवर टाइम भी लग सकता है और जो है ना ज़्यादा पाउंड्स भी अर्न किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे सम टाइम लगता है कि अपनी जो ज़ाती खुशी है उसके लिए इन चीज़ों को मुझे जो है कुर्बान करके इनको साइड पे करके तो अपनी खुशी के लिए ट्रैवल करना चाहिए। तो फिर मैं जो है ना कुछ चीज़ें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाया करता हूँ। अभी मैं एक जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इधर यूके में पढ़ रहे हैं, तो उनका मैसेज रिसीव हुआ तो वो कहते हैं कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना स्टडी करनी पड़ती है, तो स्टडी के साथ साथ क्योंकि मैं वो बेसिकली पाकिस्तान से इमरान का नाम है, तो वो कहते हैं कि स्टडी के साथ साथ मुझे जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है और साथ में क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमें जब बचपन से ये आदत नहीं है कि अपनी चीज़ें खाना पकाना कपड़े वगैरह हुए इस तरह की चीज़ें जो है ना हम खुद करें, तो जब हम यूके में आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें लॉन्ड्री वगैरह खुद करनी पड़ती है, तो इधर आके लाइफ जो है वो ज़्यादा जो है वो कुछ लोगों की जो इंडिया पाकिस्तान से आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो गई है, तो उनका ज़्यादा टाइम जो है वो इन चीज़ों में जा रहा है। तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मुझे स्टडी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है और साथ में अपनी लॉन्ड्री अपनी फूड प्रिपेयर करनी और साथ में जो है ना ओवर टाइम मैं जो स्टूडेंट के लिए जो अलाउ है वो उसमें काम करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो मुझे फैमिली के लिए मेरे जो बैक होम कंट्री फैमिली है उसके लिए टाइम नहीं निकलता। तो कहते हैं ये जो बैलेंस्ड लाइफ का जो एक वर्ड है एक जुमला है वो बड़ा लिखा हुआ तो बड़ा प्यारा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली इसे अचीव करना बड़ा मुश्किल है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस चल रहा है तो भी आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट, ये बिल्कुल नहीं रुकेगी और एंटरटेनमेंट के लिए हम जो है ना वो लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं और जो उनकी रिक्वेस्ट बेसिकली आ रही हैं ट्रैक प्ले करने की तो वो हम साथ साथ शामिल कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आई है वो क्या है उस सॉन्ग को जो हम अभी प्ले करेंगे अपने शो में।

हमें रिक्वेस्ट आई है एम्पलीफायर बाय इमरान खान, जो मेरा बचपन में बड़ा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, तो इसकी डेडिकेशन है। अली ने हमें मैसेज किया है, वो अपने दोस्त को जो है ना वो डेडिकेट करना चाहते हैं बचपन की यादों को बेहतर बनाने के लिए।

Welcome back again in Faza 97.1 FM. अभी हम गाने से लौट के वापस आ चुके हैं.

शो है वो है ड्राइव जोन, और इसका मेन जो पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली काफ़ी हैवी है, वो हमारे जो बेसिकली जो हमारा शो की जो टोन उसको सूट तो नहीं करता, लेकिन क्या करें कि शो भी हमारी ज़िंदगी के लिए और बैलेंस लाइफ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने क्या हुक कहा है कि जो ज़रूरतें हैं वो जो है वो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें जो है वो बादशाहों की भी रह जाती हैं। तो बैलेंस लाइफ को अटेन करने के लिए जो मेन जो डिफरेंस जो आपको फाइंड करना हो वो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और जो अननेसेसरी जो आपकी ख्वाहिशें हैं और डिज़ायर्स हैं उनके बिटवीन का जो जो असल प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करते ही आपको पता चलेगा कि आप किधर किधर अननेसेसरी जो है ना वो आपका जो टाइम है बेसिकली वो कंज्यूम हो रहा है, तो उसको आपने कैसे सेव करना है। जैसा कि ये जो मेरे 2 घंटे हैं जो मैं इधर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये मेरा बेसिकली टाइम होता था अपने दोस्तों के लिए, तो वो आजकल वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो मुझे गेमिंग की जो है बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और ना मैंने कभी गेम अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उनको छोड़ के जो है ना अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए टाइम निकालूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी सख्त फैसले लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ और अपने जो आने वाले वक्त को बेहतर करने के लिए, तो वो मैंने लिया। लेकिन अभी जो टाइम आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा स्पेंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ कंप्लेन करते हैं, तो वीकेंड्स पे भी पहले वो रोज़ मुलाकात होती थी उनके साथ, लेकिन अभी जो मेरी जो उनके साथ मीटअप है वो कन्वर्ट हो गया है वीकेंड्स पे। कहीं कहीं कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपनी जो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिधर से हम जैसे हमें ट्रेंड किया जाता है बचपन से ही, तो हमें किसी की जो परमिशन का उसका पाबंद जो हमें बनाया जाता है। ऑफिस में काम करते हैं तो मैनेजर होता है, स्कूल में जाते हैं तो उधर टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो प्रोफेसर्स होते हैं, तो ये सारा एक मैकेनिज्म है जो हमें एक परमिशन के नीचे लेके आता है कि हमने अपनी कोई भी नेक्स्ट मूव है तो उसको फॉलो जो है ना वो किसी की इंस्ट्रक्शंस के साथ लेके चलना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वो इन इंस्टीट्यूशन से भाग जाते हैं, तो वो अपनी मन की जो अपनी ख्वाहिश वाली ज़िंदगी है वो गुजारते हैं। काम और मसरूफियात कभी ख़त्म नहीं होती, और बहुत से दुनिया के जो मिलियनेयर्स हैं, टॉप 10 लोग हैं, तो उनके पास पे भी पहली बात उनके पास तो टाइम नहीं मिलेगा अगर हम उनके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, तो उनकी बातों से लगता है कि अभी उन्होंने 10% काम किया, तो 90% स्टिल देर उनके जो एम्स हैं, जो गोल्स उन्होंने सेट किए हुए हैं, तो उसके लिए जो उनके पास टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हैं। हालांकि जो उन्होंने अचीव किया उसका 1% भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, अगर इतना भी हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ फुल सेटल हो जाएगी। आने वाली और जो ख्वाहिश है बेहतर से बेहतर की और ज़्यादा से ज़्यादा की, ये हमें और हमारा जो कीमती टाइम है इसको कंज्यूम करती है। तो जब हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़े से मतलब हैवी फील कर रहे होते हैं और हमें खुशी नहीं मिल रही होती, हालांकि जो बेसिक बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, गाड़ी होगी, अच्छा मोबाइल हो गया और इस तरह की चीज़ें जो हमें जो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है हमारे पास होती भी हैं, लेकिन हम जो मज़ीद अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम है। इसी को फुलफ़िल करने के लिए हम डे एंड नाइट आजकल बिज़ी हैं। इसी के साथ साथ जो है ना हम नेक्स्ट ट्रैक को प्ले करेंगे अपने प्रोग्राम में।

वेलकम बैक। अभी हम सारी जो टाइम हमारे पास काम था तो उस वजह से हमें सारी जो सॉन्ग की जो रिक्वेस्ट आई थी उनको हमने साथ ही प्ले किया है। तो आज का जो टॉपिक था वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव था और साथ साथ जो है ना आपके साथ जो टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लग गया। और दो घंटों का जो टाइम गुजरा है वो उसका जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा। तो बात हमारी जो थी वो उसकी कंक्लूजन यही है कि बैलेंस लाइफ वो अगर इस बारे में सोचना भी चाहिए और जो कोशिश करके थोड़ा सा बैलेंस लेके आना चाहिए, कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो हमें ज़िंदगी में खुशी देते हैं, तो यही ज़िंदगी का मकसद है। वरना ज़िंदगी में आपने देखा होगा और हम हिस्ट्री में भी देखते हैं बहुत सारे बादशाह और जो है ना वो किंग्स दुनिया से चले गए हैं और ख्वाहिशें उनकी भी रह गई हैं और ज़रूरतें जो है वो फ़कीरों की भी पूरी हो गई हैं। तो इसके बीच में ही जो है वो आंसर है। तो दोबारा कल इसी वक्त पे आपके साथ जो है ना दोबारा हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे, आप लोगों को जो है अच्छे अच्छे जो है एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपकी रिक्वेस्ट और आपका एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करते चलेंगे। और आज के लिए आपके साथ जो है ना हम इधर अपना हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट अगेन एंड वी विल डिस्कस लॉट अबाउट आवर लाइफ़।

0: Turn it up.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
5: No.
6: Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
9: Because when we work together, it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
12: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
13: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
12: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
13: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
12: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
13: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
14: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
12: Park Foods, जो नाम है मायार का।

करते हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: Ya per English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजा 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Haza 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जल सा गया उठता धुआं
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए।
1: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

मोटे लाला शौकीन गोलमोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा तोल इसे लूट उसे

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
9: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्दा मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.